0: today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
2: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
3: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
2: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
3: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
2: फर्स्ट चॉइस
3: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
2: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
3: 01274317644।
4: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
5: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
3: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
5: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
3: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
5: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
3: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन थाए,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
3: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
5: बालियां, अंगूठियां और हार,
3: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काके की दुकान,
3: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
3: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
3: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान,
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
3: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
5: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
3: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
5: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
3: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
5: UK।
6: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
3: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
6: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
3: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
7: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
7: मैनिंगम सुपर स्टोर,
8: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्स अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवी।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: SGB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
1: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
2: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
1: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटरप्राइज ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
2: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
1: फर्स्ट चॉइस
2: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
1: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
2: 01274317644।
3: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
4: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
2: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
4: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
2: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
4: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
2: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
2: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
4: बालियां, अंगूठियां और हार,
2: जो दुल्हन करे सिंगार,
4: आज ही मामू काके की दुकान,
2: खालिस सोने की पहचान,
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
2: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
4: आपकी शान
2: हमारी आन,
4: क्वालिटी की पहचान,
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
5: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
6: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
6: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA। फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
7: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
2: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
7: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
8: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
9: You're listening to
10: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bedford Asian Radio on 14th.
2: Bradford's number one Asian community radio. Bradford Asian Radio. On 14:13 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
3: And the winner is...
4: And the winner is...
5: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
8: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
9: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
10: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
9: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
10: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
9: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
12: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
12: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
12: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
12: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
12: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
13: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
2: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।

0: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
1: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
0: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
1: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
0: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
1: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
0: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
1: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
0: बालियां, अंगूठियां और हार,
1: जो दुल्हन करे सिंगार,
0: आज ही मामू काके की दुकान,
1: खालिस सोने की पहचान,
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
1: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
0: आपकी शान
1: हमारी आन,
0: क्वालिटी की पहचान,
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुफर्ट लेन, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
1: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
0: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
1: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम, सेफ पे राइडर।
0: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए।
1: 33 वेटले लैंड, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
0: UK।
2: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
1: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
2: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
1: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
3: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
4: You're listening to
5: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड 3।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677.
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए

0: साथ चूड़ियाँ, कंगन, कांटे,
1: बालियाँ, अंगूठियाँ और हार
0: जो दुल्हन करे सिंगार।
1: आज ही मामू काकी की दुकान,
0: खालिस सोने की पहचान।
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स तशरीफ लाइए
0: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुँचाइए।
1: आपकी शान
0: हमारी आन,
1: क्वालिटी की पहचान।
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रेडफोर्ड, PD95ER01274491442।
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
2: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
3: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
4: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
3: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
4: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
5: अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
6: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
5: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
6: मैनिंगम सुपर स्टोर,
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
8: You're listening to
9: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है
2: अल्लाह

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने AsianWeddingsUK.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: AsianWeddingsUK.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
11: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
12: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعل من الراشدين. اے اللہ، ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دیں اور اس کو ہمارے دلوں میں مزین فرما دیں. کفر، گناہ اور نافرمانی سے ہم کو کراہیت عطا فرما دیں اور ہم کو کامیاب لوگوں میں شامل فرما دے۔

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा

0: पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफे राइडर
1: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत आज ही विजिट कीजिए
0: 33 वेटले लैंड ब्रेडफोर्ड 01274201679
1: safewayrider.co.uk
2: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
3: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
2: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
3: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
0: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से जर्मन वार्डरोब डाइनिंग टेबल कॉफी टेबल रग्स कारपेट मैट्रेसेस की वसी वैरायटी
5: ओपन 7 डेज 10 till 6 फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर लव फर्नीचर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड अपोजिट बार्कलेज बैंक पॉन्ड ब्रेडफोर्ड 9627229627222
4: लव फर्नीचर फर्नीचर यू लव
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
7: You're listening to
8: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
9: Bismillahir Rahmanir Rahim.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिल एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवीज।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
1: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्री ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुकफर्ट लेन, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 अथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट,
10: टैक्सी लाइसेंस,
9: हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफुट का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम, सेफ पे राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफुट, 01274201679।
9: safewayrider.co.uk।
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनिंग स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन खाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है?
11: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
12: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 days, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रैडफोर्ड 9627229622।
12: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
1: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
2: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
3: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
2: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
3: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
2: फर्स्ट चॉइस
3: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
2: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
3: 01274317644।
4: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
5: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
3: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
5: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
3: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
5: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
3: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
5: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
3: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
5: बालियां, अंगूठियां और हार,
3: जो दुल्हन करे सिंगार,
5: आज ही मामू काके की दुकान,
3: खालिस सोने की पहचान,
5: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
3: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
5: आपकी शान
3: हमारी आन,
5: क्वालिटी की पहचान,
3: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
5: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
3: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
5: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
3: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
5: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
3: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
5: safewayrider.co.uk।
6: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
3: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
6: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
3: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274306677.
8: Aag, kabhi kabhi, roshni, kahin kahin, shor, ronake. Kahin aag aag, kahin dhuaan dhuaan. Kabhi aas paas, kabhi yahan wahan. कभी शोर हो तुम, कभी मौन हो तुम।

तुम्हें नाम दिया है मैंने एक, तुम्हें शक्ल दे रहा हूं मैं अब, मासूम नजर, भोला चेहरा, हंसते हुए लब। एक शब्द हो तुम, कोई सच हो तुम, या उलझा हुआ ख्याल हो, फिलहाल तुम एक सवाल।

जिसकी तस्वीर निगाहों ने तस्वीर में देखे रंग गए, रंगों में मौसम बहार का, तेरी जीत का, मेरी हार का, इनकार का, इंतजार का, इकरार का, तकरार का, फीका सा एक रंग प्यार का।

तेरी सादगी अनमोल है, किरदार बेमिसाल है, तू जो भी है लाजवाब है, तू ख्याल है या एक सवाल है, तेरे सामने जो भी आएगा उसे तुझसे प्यार हो ही जाएगा।

0: एक बेगौर एक बेगौर क्यों बे तू दारू पिएगा
1: क्यों बे तू दारू पिएगा
0: देख भेजा मत का
1: देख भेजा मत का
0: जाता है कि नहीं
1: जाता है कि नहीं
0: साला बहुत मारूंगा
1: साला बहुत मारूंगा
0: चल चल चल बहुत देखे तेरे जैसे
1: चल चल चल बहुत देखे तेरे जैसे।

0: वरना तेरी माँ
1: क्या बोला
0: वरना तेरी माँ को बता दूंगा
1: तू मेरी माँ को बताएगा ये मेरी माँ को बताएगा सर
0: जैसे तू करेगा मैं भी करूँगा हाँ मैं भी करूँगा।

0: नशे में चल तू संभल के जरा,
1: ओ उंगली पकड़ के तू चलना सिखा।
0: नशे में चल तू संभल के जरा,
1: और उंगली पकड़ के तू चलना सिखा। जा जा मेरा पीछा छोड़ आगे बढ़ जा,
0: मुझे क्या पड़ी है जा सुली चढ़ जा।
1: जीने से मेरे

0: पीना भी न छोड़ दे, बाकी को छोड़ दे, वरना तेरे होश उड़ा दूंगा।
1: तू मेरे होश उड़ाएगा? अरे मैं तेरे होश उड़ा दूंगा यार।
0: जैसे तू करेगा मैं भी करूंगा।

0: चल घर चल रात ढल जाएगी,
1: ढल जाएगी तो फिर कल आएगी।
0: घर चल घर चल रात ढल जाएगी,
1: ढल जाएगी तो फिर कल आएगी।
0: कल तक पी के तू मर जाएगा,
1: मर जाऊंगा तो तेरा क्या जाएगा।

गया दुनिया को आग लगा दूंगा। जैसे तू करेगा मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, हाँ मैं भी करूंगा। जैसे तू

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दूल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिज़वी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिले एतमाद नाम महमूद रिज़वी अकाउंटेंट्स, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिज़वी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, महमूद रिज़वी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिज़वी।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
12: Karo ibtida jab kisi kaam ki. Karo jab. इब्तिदा किसी काम की, रखो या दिल में उसी नाम की। जबां से कहो वो खुदा एक है, जबां से कहो वो खुदा एक है, यकीन जान लो वो खुदा एक है। मेरा वो खुदा है बड़ा बेनियाज, मेरा वो खुदा है बड़ा बेनियाज, हर एक काम का है वही कारसाज। किसी का भी लोगो ना वो बाप है, जो बेटा किसी का ना वो आप है। नहीं उसका हमसर कोई दूसरा, वही सारे आलम का है बादशाह। करो इब्तदा जब किसी काम की, रखो या दिल में उसी नाम की। ज़बां से कहो वो खुदा एक है, यकीन जान लो वो खुदा एक है। मेरा वो खुदा है बड़ा बेनियाज, हर एक काम का है वही कारसाज। किसी का भी लोगों ना वो बाप है, जो बेटा किसी का ना वो आप है। नहीं उसका हमसर कोई दूसरा, वही सारे आलम का है बादशाह। मौजूद समीन कराम, हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की नशियात 1413 AM पे। यही नशियात पहुंचती हैं डैप के जरिए, प्लस डैप के जरिए चंद और इलाकों में भी, और साथ ही साथ पूरी दुनिया में यह आवाज़ पहुंच रही है ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk के जरिए। और इसके अलावा हमारा जो मोबाइल ऐप है स्मार्ट ऐप, उसके ज़रिए भी आप हमारी नशियात से लुत्फ़ंदोज हो सकते हैं। अपने फ़ोन पर हमारा ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और जहां कहीं भी आप हों आप हमारी नशियात से महसूस हो सकते हैं। समीने कराम, हस्ब मामूल हस्ब वादा आपसे मुखातिब है आपकी मेज़बान उस्मा अशफाक। प्रोग्राम इंतखाब के हमरा यहाँ पर मौजूद हैं हम, और हमेशा की तरह पुरउम्मीद और दुआगो कि आप जहाँ कहीं भी मौजूद हैं बखैरियत हैं, शादो आबाद हैं, और उम्मीद रखते हैं कि ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो के आप साथ साथ हैं। समीन कराम, आज के प्रोग्राम की तरतीब व तफसील से भी आपको आगाह करते चलें कि जो आज का इंतखाब है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ शक्ल में होता है। जी हाँ, आज के इंतखाब में हम क्या शामिल करते हैं आपके लिए? खूबसूरत से गीत तो होते ही हैं, आपकी डेडिकेशंस के साथ आपकी कुछ फरमाइशें होती हैं, उन्हें हम पूरा करने की भरपूर अपनी सी कोशिश करते हैं। उसके अलावा सामीन कराम, शेर व शायरी तो आज के प्रोग्राम में भी शामिल होती है आपके ज़ौक की तस्कीन के लिए, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम सिर्फ अल्लामा मोहम्मद इकबाल की जो शायरी है उनका मुंतखब कलाम वो आपके गोश गुजार करते हैं। जो हमारा मंडे का प्रोग्राम होता है उसमें मुतफरक जो शोरा होते हैं उनका हम कलाम पेश करते हैं, उसमें मुख्तलिफ शोरा हजरात होते हैं, लेकिन आज के दिन जो है वो मखसूस है हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल के लिए कि उनका जो मुंतखब कलाम है वो उनकी किताबों से पढ़ के हम आप तक पहुंचाते हैं अपने प्रोग्राम में गाहे बगाहे। इसके अलावा क्या है? जी हाँ सामीन कराम, इसके अलावा हरूफ तहजी का जो सिलसिला हमने शुरू कर रखा है अपने ज़खीरा अल्फाज में मज़ीद इजाफा करने के लिए, मज़ीद उसको बेहतर बनाने के लिए, तो हमारा आज का हर्फ भी है पे। पे यानी पा, अलिफ अलिफ मदा बा एंड देन फा। तो गुज़िश्ता हफ्ते भी बिल्कुल सही आपने समझा कि गुज़िश्ता हफ्ते भी प ही था, पे ही था, इस हफ्ते भी पे ही है, इसलिए कि आप खुद जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि हर हर्फ से शुरू होने वाले लातादाद बेशुमार अल्फाज हैं, लेकिन हमारा मकसद यहाँ पे वो सिर्फ जो आम बहुत ही आम अल्फाज होते हैं उनको जानना नहीं है। हम चाहते क्या हैं कि जो ऐसे अल्फाज जो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं पे वाले हर्फ से, और जो शायद उनका मतलब भी इल्म नहीं होता बहुत ज़्यादा लोगों को, तो वो हरूफ तहजी से शुरू होने वाले अल्फाज आप ढूंढें, थोड़ा सा रिसर्च करें, थोड़ी सी आप तहकीक करें, और फिर आप सोचें गौर करें, फिर हमें बताते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए हम इसको जारी और सारी रखे हुए हैं, और हमारे भी इल्म में इजाफा होता है, आप बताते हैं, और जो हम थोड़े बहुत अल्फाज ढूंढ के ऐसे लाते हैं जो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, जिनका माने मतलब भी पता नहीं होता आमतौर पर लोगों को, तो उसको हम आपको बताते हैं माने के साथ, उसका मतलब जो होता है उसके साथ, ताकि थोड़ा सा हमारा ज़खीरा अल्फाज ज़्यादा हो, हमारी उर्दू जो है वो ज़्यादा सलीस उर्दू हो जाए, अच्छी उर्दू हो जाए। तो ये सिलसिला आज शामिल है पा से, आपसे गुजारिश है कि आप शामिल हों, और इस हवाले से आम अल्फाज नहीं बल्कि जो बड़े अछूते कह लीजिए कि बहुत कम मुनफरिद अल्फाज जो हैं उनको आप प्रोग्राम में बताइएगा। इसके अलावा समीने कराम, जो अदबी इनाम याफ्ता नावल है दस्तक ना दो, जी हाँ अल्ताफ फातमा का लिखा हुआ नावल, उसका आज आठवां बाब पढ़ के हम आपको सुनाएंगे। हर हफ्ते हम आपको एक बाब पढ़ के उसमें से सुनाते हैं, खासा जहीम नावल है ये। जहीम, अब देखिए ये लफ्ज़ है, ये जहीम का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, जिसमें ज़खीरा हो, बहुत बड़ा आप कह लीजिए, भारी भरकम कह लीजिए। तो ये जहीम से मुराद ये कि बहुत, अगर इसके सफ़ात की बात की जाए तो आपको बता देते हैं इसमें कितने सफ़हात हैं इन टोटल, मतलब कुल मिला के इसके हैं 787 सफ़ात, 787 सफ़ात पर मुश्तमिल ये नावल है। बहुत इसकी वजूहात भी हम आपको बताते रहते हैं कि इसे क्यों मुंतखब किया, आपको बताएंगे जब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम इसका बाब पढ़ के आपको सुनाएंगे। तो थोड़ा सा जो गुज़िश्ता से पैवस्ता होता है, हम मुख्तसरन जो उसकी कहानी है वो हम थोड़ी सी आपको बता देते हैं और वजह भी बताते हैं कि इसे हमने क्यों मुंतखब किया अपने प्रोग्राम में सुनाने के लिए। इसको पॉडकास्ट कह लीजिए, इस प्रोग्राम का ये हिस्सा है तो वो भी शामिल होगा। और जैसा कि हमने बताया कि अलामा मोहम्मद इकबाल की शायरी आज के प्रोग्राम में शामिल है। तो जी हाँ, ये सारा सिलसिला रहेगा। आज इस इन चीज़ों का इंतखाब हमने आपके लिए मुंतखब कर रखा है। अब आप किस तरह से प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, आप नंबर मिला सकते हैं 01274306677, हमारे स्टूडियोज का नंबर। इसके ज़रिए आप डायरेक्ट यानी कि बिला वास्ता बराह रास्त जिसे कहते हैं वो आप हमसे बातचीत कर सकते हैं, अपनी आरा अपनी तजावीज़ हम तक जिस तरह आप पहुंचाते हैं। मज़ीद कुछ नए लिसनर्स भी होते हैं इसलिए नंबर बताना ज़रूरी होता है, याद भी बाज़ोकात नहीं रहता, बहुत सी मज़ीद और काम है, इंसान का जहन बहुत सी बयक वक्त बहुत सी उलझनों का शिकार होता है, बहुत सी चीज़ें जहन में चल रही होती हैं तो बाज़ोकात वो बड़ी अहम चीज़ें भी याद नहीं रहती। तो नंबर इसलिए हम आपको बताते हैं 01274306677, 01274306677। इसके अलावा आप ईमेल कर सकते हैं bradfordasianradio.co.uk पर, आपकी ईमेल भी हम तक पहुंच जाएगी। और एक और नंबर जो है, जो व्हाट्सएप का नंबर है, वो भी आपको बताते चलें 07800599563, 07800599563। ये सामीने कराम हमारा दूसरा नंबर है व्हाट्सएप का, इसके ज़रिए भी आप शामिल हो सकते हैं। तो चलिए, हम आपकी कॉल्स का इंतज़ार करेंगे और उस दौरान हम आपको ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत हमने आपके लिए क्यों कर रखा है वो पेश करेंगे। लाइंस भी हमारी ओपन हैं, आप आ सकते हैं और अपनी हम तक अपनी बात हमसे आप कर सकते हैं। तो लीजिए सामीने कराम, ये बहुत खूबसूरत सा प्रोग्राम का पहला गीत ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो के सुनने वालों के लिए।

जी हाँ सामी ने कहा, हम आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। बिल्कुल बात सही है, गीत ऐसे ही अच्छे लगते हैं, हमें भी अच्छे लगते हैं और हम ये समझते हैं हमारे सुनने वालों को भी वही गीत पसंद आते हैं जिनमें कोई बात अच्छी कही गई हो, जिनकी शायरी बहुत खूबसूरत हो, कोई मकसद हो उसका। अब ये देखिए कि इसमें कितना बड़ा सबक छुपा है कि इंसान की जिंदगी में बहारें भी आती हैं, खिजां भी आती है, ऊंच नीच होती रहती है, चलती रहती है, ये कुदरत का निजाम है। एक हर किसी का वक्त एक जैसा कभी भी नहीं रहता, उलट पलट होता रहता है, लेकिन उसमें क्या है कि आप फिर भी खुश रहिए, आप फिर भी ऊपर वाले का शुक्र अदा कीजिए कि उसने इतनी कीमती चीज आपको मुफ्त में दे रखी है। अब आप सोचेंगे वो कौन सी कीमती चीज है? जी हाँ, वो है जिंदगी। ये जो हमारी सांसें चल रही हैं, ये एक सांस भी हम नहीं ले सकते अपनी मर्जी से, सामी ने करा, हम जब तक ऊपर से हुक्म ना हो या उसका इज्न ना हो। तो ये छोटी मोटी जो आती हैं, अगर इंसान मिलजुल के साथ रहे, इंसान का हौसला बुलंद हो, उसका ईमान मजबूत हो, तो इंसान हर मुश्किल जो है, हर परेशानी जो है, उसको बड़ी आसानी के साथ झेल लेता है। लेकिन वही बात है, अगर आप बैठ के रोते धोते रहेंगे, परेशान रहेंगे, दूसरों को भी परेशान रखेंगे, ना शुक्री के जुमरे में आती है ये बात। पहली चीज़, अल्लाह को पसंद नहीं है, वो तो आजमाता है, वो तो आजमाएगा, आपको दे के भी आजमाता है, आपसे लेके भी आजमाता है। तो जब इंसान को यकीन कीजिए कि अगर यकीन हो जाए ना इस बात का, मुकम्मल यकीन है कामिल जिसे कहते हैं, तो बस फिर कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी आए, इंसान इसी तरह हंसते गाते उससे गुजर जाता है। और पता भी यकीन कीजिए कि तभी चलता है जब इंसान पे कोई इम्तिहान, कोई आजमाइश आती है, वरना हंसते हंसते तो सब जिंदगी गुजार सकते हैं। मसला यह है कि जब आपके कोई परेशानी खुदा ना खास्ता आ गई, कोई बीमारी है, कोई और तकलीफ है, कोई खानदानी मसला आ गया, कोई रुपए पैसे की, कोई जॉब का मसला हो गया, किसी बच्चे का खुदा ना खास्ता कोई मसला हो गया, कुछ भी हो गया, आपकी अपनी जात का कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, मसाइल दरपेश आ गए, तो उसमें उस वक्त आप क्या करते हैं, आपका क्या तर्ज अमल होता है, क्या आपका रद्द अमल होता है उस पर, वो चीज़ सामीने कराम बहुत ज़रूरी है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि उस वक्त आप क्या करते हैं। असल इम्तिहान इंसान का वहाँ पे होता है शुरू, कि जी आप कितने पानी में हैं। हम जितनी मर्जी बातें करते रहें, जितना मर्जी हम आवाज़ सुनते रहें या देते रहें या लिखते रहें इन बातों पे, लेकिन वही बात है कि जब इम्तिहान आता है ना, फिर पता चलता है कि कौन इंसान कितना उसमें सब्र है, कितना हौसला है, कितनी बर्दाश्त है, या वो इस पे भी अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनता है या फिर वो नाशुक्री में आ जाता है। हाँ, आप शिकवा कर सकते हैं अल्लाह से, ऐसी बात नहीं है, हर इंसान का, बंदे का अपना एक ताल्लुक होता है। ये बस हम लोगों ने खुद से बना लिए हैं कुछ चीज़ें, लेकिन हर बंदे का अपना ही एक ताल्लुक अपने मालिक, अपने खालिक से होता है, और दूसरा शख्स उसको नहीं जान सकता कि कौन अपने मालिक, अपने खालिक, अपने अल्लाह भगवान से, अपने गॉड से कितना करीब है। ये वही जानता है अल्लाह सिर्फ, बंदा भी शायद इसको नहीं जान सकता। तो बस इन चीज़ों को जहन में रखना चाहिए, इसलिए रखना चाहिए जहन में कि ये हौसला देती हैं, ये हमें तकवियत पहुंचाती हैं, मजीद जीने का एक एहसास है ना, वो जो ताकत चाहिए, एक तकवियत चाहिए, एक एनर्जी चाहिए, वो इससे मिलती है। बहरहाल जनाब तारिक भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश आपकी, आप इंतज़ार में होते हैं, आपने कहा कि जी ये 2 दिन बड़े खुशी के होते हैं कि जब प्रोग्राम होता है हमारा आप सुनते हैं। तारिक भट्ट साहब, बस जो आप तारीफ़ व तौसीफ़ करते हैं, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, आपके खलूस के तहे दिल से यकीन कीजिए कि हम मशकूर ममनून हैं, वरना तो वही बात है कि फिर नाशुक्रिया जा हो जाती है ना। तो आपने एक बड़ा खूबसूरत सा शेर भी सुनाया, सामीन का राम की नज़र करते हैं, आप कहते हैं, किसी का शेर था आपने पेश किया कि तेरी निगाह को फुर्सत ना हो सकी वरना, तेरी निगाह को फुर्सत ना हो सकी वरना, कसम खुदा की ये दिल देखने के काबिल था। वाह, क्या खूबसूरत शेर है ये, तेरी निगाह को फुर्सत ना हो सकी वरना, कसम खुदा की ये दिल देखने के काबिल था। बस बहुत अच्छा शेर जनाब तारिक भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, अपने नाज़रीन हमारे सामेईन जो हैं उन तक हमने इस शेर को पहुंचाया, और ये आने वाला जो गीत होगा
خوبصورت سا، یہ بھی جناب طارق بٹ صاحب آپ کے نام ہم کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ طفیل صاحب آپ پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. آپ نے کہا کہ کوئی اچھا سا گیت آپ کے نام کر دیا جائے، تو بالکل آپ کے نام بھی آنے والا گیت ہم کرتے ہیں. اور گزارش یہ بھی کریں گے کہ اب جو بھی ہمیں کال کریں تو برائے مہربانی، گزارش اتنی سی ہے کہ پے سے شروع ہونے والے کچھ ایسے الفاظ جو عام نہ ہوں. اب پے سے پتا بھی ہے، پانی بھی ہے، پرواز ہے، پرندہ ہے، پہچان ہے. اور جو گزشتہ ہفتے الفاظ بتائے تھے کچھ ہمارے سامعین کرام نے، گزارش یہ ہے کہ ان کو بھی آپ شامل نہ کریں، کچھ نئے الفاظ ہمیں بتائیں. تو ظاہر ہے ہمارے بھی علم میں اضافہ ہوگا اور سننے والوں کے علم میں بھی اضافہ ہوگا. تو ہمیں پ سے شروع ہونے والے الفاظ آپ بتائیے گا جو عام نہ ہو. لیجئے اب یہ خوبصورت سا گیت ہم آپ کے سب سننے والوں کے نام کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اسے پسند کریں گے.

0: money online. Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
1: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
2: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
1: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रीपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
2: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
1: फर्स्ट चॉइस
2: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
1: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
2: 01274317644।
3: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
4: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
2: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
4: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
2: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
4: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
2: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
2: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
4: बालियां, अंगूठियां और हार,
2: जो दुल्हन करे सिंगार,
4: आज ही मामू काके की दुकान,
2: खालिस सोने की पहचान,
4: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
2: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
4: आपकी शान
2: हमारी आन,
4: क्वालिटी की पहचान,
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
5: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
6: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
6: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफुट में क्या है शोर?
7: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनिंगम स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे भाला।
2: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मेनिंगम सुपर स्टोर। मेनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफुट, BD8 8AX, फोन ब्रेडफुट 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मेनिंगम सुपर स्टोर।
7: मेनिंगम सुपर स्टोर,
8: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
9: Mohammed Samin Karam, aap samat farma rahe hain Bradford Asian Radio ki nashiyat 1413 AM pe. Yehi nashiyat pahunch rahi hain puri duniya mein online www.bradfordasianradio.co.uk ke zariye aur hamare smart app ke zariye bhi आप हमारी नशरियात से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। आपसे मुखातिब है आपकी मेजबान उस्मा अशफाक, प्रोग्राम इंतखाब के हमरा। सामीन कराम, इकबाल क्या लिखते हैं, एक गजल है उनकी, मिलेगा मंजिल मकसूद का उसी को सुराग, अंधेरी शब में चीते की आंख जिसका चिराग। मिलेगा मंजिल मकसूद का उसी को सुराग, अंधेरी शब में चीते की आंख जिसका चिराग, मयसर आती है फुर्सत फकत गुलामों को, मयसर आती है फुर्सत फकत गुलामों को, नहीं है बंदे हुर के लिए जहां में फिराग, फरोगे मक्स बयां खीरा कर रहा है तुझे, तेरी नजर का निगेबां हो साहिब माजाग, वो बज़्म में ऐश है मेहमान यक नफस दो नफस, वो बज़्म में ऐश है मेहमान यक नफस दो नफस, चमक रहे हैं मिसाले सितारा जिसके अयाग, किया है तुझको किताबों ने कौर जौक इतना, किया है तुझको किताबों ने कौर जौक इतना, सबा से भी ना मिला तुझको बुए गुल का सुराग। क्या अल्लामा इकबाल की सामीन कराम शायरी है, क्या कहिए उस हवाले से, اتنے سال ہا سال پہلے انہوں نے وہ حالات پیش کیے ہمارے سامنے

जो लगता है कि आज के हालात को देख के ये अशार लिखे गए हैं। बहरहाल अब आगे चलते हैं। समीरा साहिबा, आप प्रोग्राम में शामिल हुई, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। आपकी प्यारी सी मीठी सी आवाज़ सुनी, बहुत अच्छा लगा। आपने बताया कि आप कहीं बाहर जा रही हैं, सफर में हैं, लेकिन साथ साथ प्रोग्राम सुन रही हैं। बहुत शुक्रिया समीरा साहिबा। ये आने वाला खूबसूरत सा गीत न सिर्फ आपके लिए होगा, बल्कि आपने बताया जो आपकी मेहमान आपके यहाँ मौजूद हैं, सऊदी अरब से तशरीफ लाई हैं, उनके लिए भी मोना साहिबा आपको वेलकम हम कहते हैं यहाँ यूके में। और आप मौसम से बहुत लुत्फानंदोज़ हो रही हैं, क्योंकि आपने बताया कि जी सऊदी अरब में तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आपने बताया 60 सेल्सियस टेम्परेचर। अल्लाह अकबर, बस ये अल्लाह के काम है, उसकी कुदरत देखिए कि कहीं पे 60 सेल्सियस टेम्परेचर है और यहाँ पे जो है वो 13, 12, 13, 14 सेल्सियस टेम्परेचर है और बारिश भी है साथ, जिससे आप लुत्फानंदोज़ हो रही हैं। तो ये अल्लाह की कुदरत होती है कि कहीं पे बारिश है, कहीं पे धूप है, कहीं पे जो है वो बस बादल छाए हुए हैं, कहीं बहुत सख्त गर्मी है और कहीं बहुत सख्त सर्दी भी है। तो ये अल्लाह के काम है। बहरहाल मोना साहिबा, ये आने वाला खूबसूरत सा गीत हम अपनी जानिब से भी और समीरा साहिबा की जानिब से खसूसी तौर पर उनकी फरमाइश पर आपके लिए पेश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसे पसंद करेंगी। बहुत खूबसूरत सा ये गीत है और सच बात है तो पंजाबी में, लेकिन इसके एक एक जो मिसरा है ना, अगर आप गौर से सुनिएगा तो उसमें पैगाम दिया गया है। आरिफ लोहार की खूबसूरत सी आवाज़, हमारे फोक सिंगर, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम। तो लीजिए इस खूबसूरत से गीत को सुनिएगा, हमें इसका ये वर्जन बहुत पसंद है।

0: जी बहुत खूबसूरत सा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने सामीने कराम गीत सुना, पेशकश ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की, जो आप समाप्त फरमा रहे हैं 1413 AM पे। ऑनलाइन हमारी नशियात पहुंचती हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो .co.uk के जरिए, और अपने स्मार्ट फोन पर हमारे स्मार्ट फोन ऐप के जरिए भी आप हमारी नशियात से लुत्फ़ानंदोज़ हो सकते हैं। आपसे मुखातिब आपकी मेज़बान उस्मा अशफा। अलामा मोहम्मद इकबाल जो है मदरसा के हवाले से क्या लिखते हैं सामीने कराम, क्या उन्होंने कहा, वो कहते हैं असरे हाजिर मलकुल मौत है तेरा जिसने, असरे हाजिर मलकुल मौत है तेरा जिसने, कब्ज की रूह तेरी देखे तुझे फिक्रे माश, दिल लरस्ता है हरीफाना कशाकश से तेरा, जिंदगी मौत है खो देती है जब जौके खराश, उस जुनू से तुझे तालीम ने बेगाना किया, उस जुनू से तुझे तालीम ने बेगाना किया जो ये कहता था खिरत से कि बहाने न तराश, फैज़े फितरत ने तुझे दीदा शाही बख्शा, फैज़े फितरत ने तुझे दीदा शाही बख्शा जिसमें रख दी है गुलामी ने निगाह खफाश, मदरसे ने तेरी आंखों से छुपाया जिनको, खलवते कोहो बयाबा में वो इसरार हैं फाश, असरे हाजिर मलकुल मौत है तेरा जिसने, कब्ज की रूह तेरी देके तुझे फिक्रे माश, दिल लरसता है हरीफाना कशाकश से तेरा, जिंदगी मौत है खो देती है जब जौके खराश, उस जुनू से तुझे तालीम ने बेगाना किया जो ये कहता था खिरत से के बहाने न तराश, फैज़े फितरत ने तुझे दीदा शाही बख्शा जिसमें रखती है गुलामी ने निगाह खफाश, मदरसे ने तेरी आंखों से छुपाया जिनको, खलवते कोहो बयाबा में वो इसरार हैं असरार हैं फाश। ये अलामा मोहम्मद इकबाल ने मदरसे के हवाले से कहा। सामीने कराम, बहुत सी चीज़ें बदल गई, वो असातज़ा बहुत से बदल गए, वो तालिब इल्म वो वाले नहीं रहे, वक्त बहुत आगे चला गया, ज़माना नहीं बदलता। ये हम गलत कहते हैं कि जी ज़माना बदल गया, ज़माना बड़ा ख़राब हो गया, ज़माना पहले ऐसा था अच्छा था अब बुरा है, बल्कि हुक्म क्या है कि ज़माने को बुरा मत कहो, हमें यह हुक्म है। तो ज़माना बुरा नहीं होता बज़ात खुद, ये हम लोग होते हैं जो वक्त के हिसाब से हम अपने आप को नहीं चलाते, ख़राब कर लेते हैं, बहुत सी हम में ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं, हम वक्त के हिसाब से चलते नहीं हैं, या आगे चले जाते हैं बहुत या पीछे रह जाते हैं, क्योंकि वक्त के साथ चलना दानिशमंदी है, अकलमंदी है, ये बात तो सही बजा, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वक्त गुजर जाए तो आप वो जो खूबियाँ थी आपकी अच्छी अच्छी जो हमारे अंदर जो पहचान थी हमारी एक बहसियत शख्सियत कह लीजिए, वो तो खैर अलहदा बात होगी, लेकिन मिन हैसुल कौम, बहसियत एक मुआशरे के एक उम्मत के एक कौम के जो खूबियाँ थीं, जो मदरसे का एक किरदार था, वो सामीने कराम ज़रा कम कम नज़र आता है, क्योंकि हमारी जो अप्रोच है ना बहुत ज़्यादा वो फ़र्क हो गई, मटेरियलिस्टिक हो गई, हर बंदा पैसे के पीछे भाग रहा है, हर बंदा चाहता है कि वो आसाइश आते ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर ले, खा वो फेयर मीन से आए खा वो अनफेयर मीन से हासिल करे, ये इससे कतई नज़र, तो यहाँ पे फिर ख़राबी पैदा हो गई। आप ज़रूर पैसा हासिल कीजिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आया वो पैसा हलाल से आ रहा है या हराम कमाई है। अगर वो गलत तरीके से आ रहा है, किसी को धोखा देके, अमानत में खयानत करके, बेईमानी करके, तो फिर तो जाहिर है वो पैसा हलाल नहीं होगा। या ऐसा काम कोई आप कर रहे हैं कि जहां पे काम करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि रिस्क देने का वादा ऊपर वाले ने कर रखा है, ये हमेशा याद रखिए। वो अपना वादा नहीं भूलता, बस हम अपने वादे भूल जाते हैं। उसने कहा कोशिश करो, हिम्मत बंधाओ अपनी, और इंसान अपने हाथ पांव इस्तेमाल करे तो रोजी रोटी रिस्के हलाल कमाना भी अब सब जानते हैं ऐन इबादत है, तो ये इबादत करते रहिए, लेकिन इबादत को इबादत समझ के करेंगे तो वो हलाल रहेगी, ज़रा भी उसमें अगर आगे पीछे हो गए तो जाहिर है फिर वो हलाल जो है वो हराम बन जाता है। और मदरसों में भी या तालीम जो है ना, आजकल बहुत कम ऐसे मदरसे हैं जो बहुत सही मानों में तालीम और तरबियत दे रहे हैं, عموماً یہی ہے کہ بس یہ اپنا وقت گزارا, اتنے بجے نوکری شروع ہوئی, اتنے بجے ختم ہوئی, اب بچوں کو سمجھ میں آیا نہیں آیا, کیا پڑھا رہے ہیں, بس لفاظی رہ گئی ہے, وہ جو ان الفاظ کی روح تھی نا وہ تھوڑی بہت کہیں آگے پیچھے ہو گئی ہے, تو اس کو ڈھونڈنے کی کوشش ہے. بچوں کو اس طرف لے کے آئیے کہ وہ کل کو بڑے ہو کر اچھے انسان بنے. جیسے کل کے پروگرام میں بات ہوئی تھی اخلاق کے حوالے سے, تو اگر انسان کے اچھے اخلاق نہیں ہے, انسان کس طرح اپنے آپ کو اچھا انسان کہلا سکتا ہے, کس طرح سے دعویٰ کر سکتا ہے انسان کے وہ اشرف المخلوقات ہے. پھر وہ سب دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اگر ہمارا اخلاق اس کی عکاسی نہیں کرتا, یا ہمارا کردار اس کی عکاسی نہیں کرتا, یا اس کی اس طرح سے تصویر پیش نہیں کرتا. تو یہ باتیں انسان کو سوچنی چاہیے, ذہن میں رکھنی چاہیے. لیجئے اب یہ خوبصورت سا گیت ہم آپ کو سناتے ہیں, امید کرتے ہیں کہ آپ اسے پسند کریں گے.
1: جانم دیکھ لو مٹ گئی دور, یہاں یہاں

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
6: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
7: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
6: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
6: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
8: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
9: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
8: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
9: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
6: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
9: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
6: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
9: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
6: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
9: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK।
10: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
11: Seene mein agar na ho dile garam, reh jaati hai zindagi mein khami. सीने में अगर ना हो दिले गर्म, रह जाती है जिंदगी में खामी। नखचीर अगर हो जीरक और चुस्त, आती नहीं काम कोहना दामी। है आबे हयात इसी जहां में, शर्त इसके लिए है तिश्ना कामी। गैरत है तरीकत हकीकी, गैरत से है फुक्र की तमामी। ऐ जाने पिदर, नहीं है मुमकिन शाही से तरदर्द की गुलामी। नायाब नहीं मताए गुफ्तार, सदा नूरी ओ हजार जामी। है मेरी बिसात क्या जहां में, बस एक फगान जेरबामी, एक सदके मकाल है कि जिससे मैं चश्मे जहां में हूं गिरामी। अल्लाह की देन है जिसे दे, मीरास नहीं बुलंद नामी। अपने नूर नजर से क्या खूब फरमाते हैं हजरत निजामी, जाए के बुजुर्ग बायदत बूद, फर्जंदी मन नदारत सूद। सामीन कराम, आपसे मुखातिब है आपकी मेजबान उस्मा अशफाक। प्रोग्राम इंतखाब के हमरा समात फरमा रहे हैं आप ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की नशियात 1413 AM पे, और साथ ही साथ ऑनलाइन ये नशियात पहुंच रही हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो .co.uk के जरिए पूरी दुनिया में। और हमारा जो मोबाइल ऐप है फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल फोन में और हमारी नशियात से आप लुत्फानंदोज हो सकते हैं जहां भी मौजूद हैं। इसके साथ प्लस डैप के जरिए चंद इलाकों में ये नशियात पहुंचती हैं। उम्मीद करते हैं अब तक का इंतखाब आपको पसंद आया होगा, खा वो गीतों की शक्ल में था या अलामा इकबाल की जो शायरी, उनका जो मुंतखब कलाम है आप तक पहुंचा रहे हैं हम। उम्मीद तो यही है कि आपको पसंद आ रहा होगा, आप समझते होंगे उसको। थोड़ा सा मुश्किल है समझना क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फारसी के अल्फाज हैं, बहुत ज़्यादा अरबी के अल्फाज हैं और बहुत अच्छी वाली उर्दू जो है वो उसमें शामिल है। साथ ही साथ आपको याद दहानी कराते चलें कि हमारा आज का जो हरूफ तहज्जी है, आज के प्रोग्राम में हम आपसे जिन अल्फाज का पूछ रहे हैं वो शुरू होते हैं प से, पे प, तो उसके से शुरू होने वाले अल्फाज आप हमें बता सकते हैं 01274306677 इस नंबर के जरिए। और साथ ही साथ आप ईमेल भी कर सकते हैं bradfordasianradio.co.uk के जरिए। जुनेद साहब आप तशरीफ लाए थे प्रोग्राम में और आपने हमें 3-4 अल्फाज बताए हैं। आपने कहा पापोश, परवरिश, पच्छम और पारा, ये 4 अल्फाज जुनेद साहब आपने बताए। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश शामिल होने के लिए सिलसिले में। अजरा साहिबा बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, आपकी खनकती हुई खूबसूरत सी आवाज़ सुनी, बहुत अच्छा लगा। आपने बताया जी कि ये गुज़िश्ता हफ्ते से आपने अल्फाज सोच रखे हैं लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते आपको मौका नहीं मिला बताने का, तो आपने अल्फाज बताए अजरा साहिबा पंगा, परांदा, पैदाइश और पुजारी। ये अल्फाज आपने बताए पंगा, परांदा, पैदाइश और पुजारी, पे से शुरू होने वाले। तो बहुत शुक्रिया अजरा साहिबा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। ये आने वाला खूबसूरत सा गीत हम आपके लिए पेश कर रहे हैं अजरा साहिबा, और आपने कहा कि समीरा साहिबा और मोना साहिबा की नज़र किया जाए, तो आने वाला गीत होगा आपकी जानिब से समीरा साहिबा और मोना साहिबा के लिए। और मत भूलिएगा, आपको याद करा दें इस गीत के फौरन बाद जो हमारा सिलसिला है नॉवेल का दस्तक ना दो, अल्ताफ फातिमा का लिखा हुआ जो पॉडकास्ट है वो भी आपके लिए हम गोश गुजार आपके करेंगे। आज उसका 8वां बाब आपके लिए पेश किया जाएगा। कहानी अब चल पड़ी है आगे, तो आप उसको जरूर सुनिएगा सिलसिले को। इस गीत के फौरन बाद होगा दस्तक ना दो। लीजिए अब ये खूबसूरत सा गीत अजरा साहिबा आपकी जानिब से समीरा साहिबा और मोना साहिबा के लिए, और आप कॉल कर सकते हैं 01274306677।

0: to 7431764.
1: For quality, value, style and security, your number one choice, first choice, Windows Yorkshire.
2: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
0: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
2: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
0: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
2: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY,
0: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
2: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
0: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
2: बालियां, अंगूठियां और हार,
0: जो दुल्हन करे सिंगार,
2: आज ही मामू काके की दुकान,
0: खालिस सोने की पहचान,
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
0: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
2: आपकी शान
0: हमारी आन,
2: क्वालिटी की पहचान,
0: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95 ER, 01274491442,
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
0: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
2: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
0: 30 साल ब्रेडफुट का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
2: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए।
0: 33 Wetley Lane, ब्रेडफुट, 01274201679,
2: safewayrider.co.uk।
3: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
0: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
3: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
0: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
4: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
0: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रेडफोर्ड 9627229622।
4: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
6: जी मौजी सामीन कराम, आप समात फरमा रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की नशियात। 1413 AM पे यही नशियात पहुंच रही हैं ऑनलाइन पूरी दुनिया में, www.bradfordasianradio.co.uk के जरिए। और जैसा कि हम बताते हैं कि जो हमारा मोबाइल ऐप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उस पर भी हमारी नशियात सुन सकते हैं। और न सिर्फ खुद सुनिए, बल्कि आपसे ये भी गुजारिश होती है कि आप अपने दोस्त अहबाब को भी बताइए कि इर्द गिर्द जो भी हैं, अगर अक्सर लोग फारिग होते हैं तो वो फिर रेडियो को सुनेंगे तो यकीनन उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। जैसे आप लोग तो काम पे हो तब भी आप प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं, ये बहुत आपकी नवाजिश है, बहुत आपका शुक्रिया है। अच्छा, अब आपको सबसे पहले तो हम अलामा इकबाल का एक और कलाम, उनकी गज़ल है, वो हम सुनाते हैं, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमें किन किन की मज़ीद कॉल्स मौसूल हुई, क्या क्या हमें नए अल्फाज जो है ना वो सुनने को मिले। और यह है कि आज़ादी निस्वा के हवाले से अलामा इकबाल ने क्या लिखा था। आज़ादी निस्वा, निस्वा मतलब औरतें जो होती हैं, औरतों की आज़ादी के हवाले से, कि इस बहस का कुछ फैसला मैं कर नहीं सकता, इस बहस का कुछ फैसला मैं कर नहीं सकता, गर खूब समझता हूँ कि ये जहर है वो कंद। जहर क्या होता है सबको पता है, कंद क्या होता है, मीठी चीज, शीरी चीज। क्या फायदा कुछ कह के बनूं और भी मातूब, क्या फायदा कुछ कह के बनूं और भी मातूब, पहले ही खफा मुझसे हैं तहजीब के फर्जंद। इस राज को औरत की बसीरत ही करे फाश, इस राज को औरत की बसीरत ही करे फाश, मजबूर हैं, माजूर हैं मर्दाने खिरदमंद। क्या चीज है आरायश व कीमत में ज्यादा, क्या चीज है आरायश व कीमत में ज्यादा, आजादी निस्वा के जमर्रुद का

गुलूबंद। क्या खूबसूरत इकबाल में तकरीबन 150 साल पहले सामिने कराम ये चीज़ लिख दी कि वो इस बहस का फैसला नहीं कर सकते कि ये चीज़ जो है, जो जो आज़ादी निस्वा है, ये जहर है या ये जो मिठाई है, ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। और वो कहते हैं, मुझे क्या फ़ायदा है कि मैं ये कह के मज़ीद लोगों की लान तान को बर्दाश्त करूं, पहले ही जो तहजीब के लोग हैं ना, फर्जंद तहजीब के, वो मुझसे खफा हैं। और उन्होंने कहा कि औरत जो है उसकी बसीरत ही इसे फाश कर सकती है, मर्द हजरात जो हैं वो तो खैर मजबूर हैं और माजूर हैं। और उन्होंने कहा कि क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है औरत के लिए आराइश में, उसकी कीमत में? आज़ादी निस्वा ज़रूरी है कि जमर्रत का गुलूबंद? देखिए, तशबीह दी इकबाल ने इसको कि जैसे औरतें हार सिंगार करती हैं, जेवरात पहनती हैं, तो गुलूबंद जो होता है वो गले का जेवर होता है जो पहना जाता है, जिसे आप नेकलेस कहते हैं और फ़याम में। तो गुलूबंद से उन्होंने क्या खूबसूरत उस चीज़ की तशबीह दे दी ग़ुलामी की, कि जैसे किसी के गले में अगर पटा डाल देते हैं, कुछ जानवर होते हैं, आपको पता है कि वो जो आपके पेट्स होते हैं उनके गले में आप पटा डालते हैं, मतलब कि वो फलां की मलकियत है। तो उन्होंने इस चीज़ को आज़ादी निस्वां के जमर्रत का गुलूबंद, क्या खूबसूरत तरीके से कहते हैं ना कि कूजे को, दरिया को कूजे में बंद करना, तो इकबाल ने ये काम किया कि दरिया को, बल्कि दरिया क्या, हम तो कहेंगे समंदर को कूजे में बंद कर दिया। कि किस तरह से उन्होंने इस चीज़ को, किस दो अल्फाज कहे और पूरा अपना मकसद जो था कहने का वो बयान कर दिया। ये इकबाल ही का खासा है सामीने कराम। आज़ादी खा औरत की हो, खा मर्द की हो, किसी की भी हो, आज़ादी एक हद तक हो तो बहुत अच्छी लगती है। बेजा आज़ादी जो होती है, जो मादर पिदर आज़ादी जिसे कहा जाता है, वो हम ये समझते हैं कि बिल्कुल भी कहीं भी उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए, वो ना पसंदीदा है, वो जहर है, वो कभी भी कंद नहीं हो सकती। इंसान को हमेशा अपनी लिमिट्स, अपनी हदूद पता होनी चाहिए कि बस ये हद है, इससे आगे इंसान इस हद को क्रॉस ना करे तो बहुत बेहतर होता है। हाँ, वो औरत की आज़ादी है, हाँ वो मर्द की आज़ादी है। और ये खैर बात कभी इस पे करेंगे कि औरत और मर्द को क्या उनमें फ़र्क है बहसियत इंसान, और किस तरह से फिर उनके हकूक व फ़राइज़ जो हैं वो भी बदलते हैं। इंशाअल्लाह ताला हुल अज़ीज़ अपने मंडे के प्रोग्राम में, याद रहा तो हम इस बारे में ज़रूर बात करेंगे आपसे। तो हमें फ़ोन किसने किया था? जी फ़ोन हमें किया था जनाब महबूब इलाही साहब, आपने बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आपने चंद दो तीन बस अल्फाज बताए जल्दी जल्दी, आपने कहा कि पहाड़ी, परेशानी और पहचान, ये तीन अल्फाज आपने बताए महबूब इलाही साहब, बहुत शुक्रिया इस सिलसिले में शामिल होने के लिए। और फिर आपने कहा कि चौधरी रुखसार साहब, चौधरी मुजफ्फर साहब और जनाब शकील साहब, इनके लिए खूबसूरत सा कोई गीत कर दीजिए। तो महबूब इलाही साहब, आपकी जानिब से आने वाला जो गीत है वो चौधरी रुखसार के लिए, मुजफ्फर साहब के लिए और शकील साहब के लिए हम पेश करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि वो इसे पसंद करेंगे। सादिया साहिबा, आप प्रोग्राम में शामिल हुई, बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत नवाजिश। आपने चार अल्फाज बताए, आपने आपने बताए पूरब, पूर्णमा, पछतावा और पेश पेश। ये चार अल्फाज आपने बताए, पूरब, पूर्णमा, पछतावा, पेश पेश। बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा, तहे दिल से आपके मशकूर व ममनून कि आप शामिल हुई इस सिलसिले में, इन अल्फाज से नवाजा। चौधरी रुखसार साहब, आप दोबारा शामिल हुए, आपने हमें कौन से अल्फाज, आपने कहा कि एक लफ्ज़ रह गया था पसे पुश्त, पे से शुरू होने वाले जो अल्फाज आपने पहले बताए थे वो कौन से थे? परवरदिगार, परस्तिश, पापोश, परचम, पाबंद रसन, पछतावा आपने भी ये नहीं के बताया था, और पैमाना और पाइंदा, और अब आपने बताया पसे पुश्त। अब इस सबका मतलब भी बताएंगे आपको थोड़ी देर में ज़रूर। तो बहुत शुक्रिया चौधरी रुखसार साहब। और आपने कहा कि पाकिस्तान में आपके दोस्त हैं, उनकी माशाल्लाह से आज शादी है, तो जी आप उनके लिए गीत सुनना चाहते हैं। तो चौधरी रुखसार साहब, फ़िलहाल ये गीत जो है ये हम लगा रहे हैं आप ही के लिए, महबूब इलाही साहब की जानिब से। और जो आपने जिस गीत की फरमाइश की है वो इस गीत के बाद होगा। तो लीजिए ये खूबसूरत सा गीत सुनिए, ये है
محبوب الہی صاحب کی جانب سے چودھری رخسار کے لیے، چودھری مظفر اور شکیل صاحب کے لیے، سادیہ صاحبہ آپ کے لیے بھی یہ بہت خوبصورت سا گیت، امید کرتے ہیں آپ پسند کریں گی۔ اور پھر چودھری رخسار صاحب، آپ کے دوست کی شادی کی پہلے تو بہت بہت مبارکباد ہماری جانب سے، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی پوری ٹیم کی جانب سے۔ اللہ کرے ان کی زندگی کا یہ نیا سفر جو ہے وہ بہت مبارک ہو، ثابت ہو، نہ صرف ان کے لیے، اس بچی یا لڑکی یا خاتون کے لیے بھی جن کے ساتھ وہ رشتہ بندھے جا رہا ہے، اور ان دونوں کی فیملیز کے لیے بھی۔ بہت سی دعاؤں، بہت سی نیک تمناؤں کے ساتھ اگلا گیت ہم لگائیں گے، فی الحال یہ سنیے گا۔

0: जी समीने का नाम, वो तो जो हुआ सो हुआ। बहरहाल बहुत खूबसूरत सा गीत था। चौधरी रुखसार साहब, आप फिर तशरीफ लाए। आपने कहा कि जी कैसे हो सकता है, जिसकी शादी हो रही है वो कहाँ से गीत सुनेगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि उनको इतना वक्त आज कहाँ होगा। चलिए कोई बात नहीं, जिंदगी रही, अगले हफ्ते अगर फिर दोबारा प्रोग्राम हुआ तो उनके लिए फिर हम अच्छा सा गीत लगा देंगे। आप हमें बताइएगा, याद दहानी करा दीजिएगा, तो बहुत खूबसूरत सा कोई और गीत उनके लिए हम ज़रूर पेश करेंगे। हम यहाँ इसीलिए तो, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो इसीलिए तो आपके लिए खुशी में खुश रहता है, आपके दुख दर्द बांटने के लिए यहाँ मौजूद होता है। हमारे जितने साथी प्रेजेंटर्स हैं उन सबकी यही कोशिश होती है कि वो अच्छे से अच्छा जो है प्रोग्राम पेश करें, आपकी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए, आप की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए, जो आपको अच्छा लगता है, मौसीकी है, ख्वाबो शायरी है, ख्वाबो और जो बातचीत होती है, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम अच्छे से अच्छी बात की जाए। जनाब तारिक भट्ट साहब, आप फिर तशरीफ़ लाए थे। आपने कहा बड़ा खूबसूरत सा एक और आपने शेर सुनाया। आपने कहा कि आपके नाम से मिलती है, आपके नाम से मिलता है दिल को सुकून, आपके नाम से मिलता है दिल को सुकून, आपके नाम में कुदरत ने शिफा रखी है। बड़ा खूबसूरत शेर सुनाया तारिक भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, आपकी दुआओं, आपके खलूस के तहे दिल से हम मशकूर ममनून हैं, और आपके लिए भी हम उसी तरह से दुआगो हैं जिस तरह से आप लोग हमारे लिए दुआगो रहते हैं। तो बहुत शुक्रिया तारिक भट्ट साहब, बहुत नवाजिश। इसी तरह चौधरी रुखसार साहब, आप भी उन लोगों में से हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। हमारी अजरा साहिबा हैं, समीरा साहिबा हैं, हमारी हमारी हमें इल्म है कि जरका साहिबा जो हैं वो तो बड़े नेक सफ़र पे गई हुई हैं, और यकीनन वो हमारे लिए ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की पूरी टीम के लिए दुआगो होंगी। हमने उनसे दरख्वास्त की थी, इसलिए फ़िलहाल वो गैर हाजिर हैं। और साथ ही साथ क्या है, तुफैल साहब, जुनेद साहब, महबूब इलाही साहब, आप जब जब आपको वक्त मिलता है, आप जब जब भी सुनते हैं, आप प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं, बहुत शुक्रिया तहे दिल से। हम आप सबके मशकूर ममनून हैं इस प्रोग्राम को खूबसूरत बनाने में, इसको मज़ीद इसको निखारने में, इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाने में, आप सबका ही हाथ है उसमें। इसमें हमारा कोई कमाल जिसे कहते हैं ना, हरगिज़ नहीं है। इकबाल का एक कलाम आपके पे गोश गुजार करते हैं, उसके बाद 12 बजेंगे, और फिर बल्कि अब वक्त नहीं है कि इकबाल का कलाम आपके लिए पेश किया जाए, चंद ही सेकंड जो हैं वो रह गए हैं ब्रेक में। तो कमर्शियल ब्रेक भी बहुत ज़रूरी होती है सामीने कलाम, हर चीज़ का अपना एक वक्त होता है, हर चीज़ की अपनी एक अफादियत होती है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। जो पहले बात हुई थी कि ना वक्त से आगे इंसान को निकलना चाहिए, ना वक्त से पीछे रह जाना चाहिए, वक्त के साथ साथ चलने में ही कामयाबी है। और जनाब तारिक भट्ट साहब, इस ब्रेक के बाद जो गीत होगा खसूसी तौर पर, वो आपके लिए फिर हम पेश करेंगे। सुनते रहिए ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को।
1: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ 3 दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबी रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274-424-444 or donate online at ikca.org.uk.
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
1: ऐसा उम्दा लजीज 01274317644।
2: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।

0: services.uk.
1: दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
2: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
1: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
2: बालियां, अंगूठियां और हार,
1: जो दुल्हन करे सिंगार,
2: आज ही मामू काके की दुकान,
1: खालिस सोने की पहचान,
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
1: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
2: आपकी शान
1: हमारी आन,
2: क्वालिटी की पहचान,
1: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, Bradford, PD9 5ER 01274 491 4422।
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
3: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
4: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
5: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
4: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
5: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
6: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414 2600 78।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274 306 567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274 731 555, mangalacateringservices.uk।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548 419 678।
7: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है कम।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेबल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान
7: केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन

0: आएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
1: बस ट्रक फोकलिफ्ट टैक्सी लाइसेंस हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
0: 30 साल ब्रेडफ्रूट का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफे राइडर,
1: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
0: 33 वेटले लैंड ब्रेडफ्रूट 01274201679
1: saferider.co.uk।
2: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
3: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
2: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
3: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
4: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताज़ा सब्जियाँ, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
3: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
4: मैनिंगम सुपर स्टोर,
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, आवर वॉइस, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk।
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिले एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवी।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

ये ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो की आवाज है 1413 मीडियम वेव पर। यॉर्कशायर की ससीन वादी ने दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे सुना जा रहा है ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर। इसके अलावा हमारे वो अहबाब जिनका फेसबुक अकाउंट है, मेरा पेज है RJ रिफत अब्बास, इस पे तशरीफ लाइए, एक मरतबा लाइक कर लें और फिर आप हमारी लाइव नशियात में शामिल हो पाएंगे। साथ ही साथ हमारे वो अहबाब जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड के किसी भी शहर में सुन रहे हैं, हम उन्हें भी दिल की तमाम तर गहराइयों से गजल उसने छेड़ी में खुश आमदीद कहेंगे। हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 01274306677। नंबर मैं एक मरतबा फिर दोहरा देता हूं अपने उन अहबाब के लिए जो हमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड में सुन रहे हैं। 01274 ब्रेडफोर्ड का कोड है और बहुत आसान है, 306677। यह हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है। हम आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहेंगे। अगर आप हमारे प्रोग्राम गजल उसने छेड़ी की इज्जत और तौकीर बढ़ाना चाहें,

हमारे अहवाल की बात तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। हाँ, मौसम का अहवाल कुछ यूं है कि सुबह से गहरे बादल छाए हुए थे और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी था, जो कभी कभी तेजी भी इख्तियार कर जाती थी। टेम्परेचर 13 सेंटीग्रेड था। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक सपहर तक बेहतर होने का मौसम कुछ इम्कान मौजूद है। टेम्परेचर 16-17 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। बारिश की तवक्का भी जाहिर की गई है, लेकिन सपहर में कम उम्मीद की जा रही है। आप सुनाइए, आपके यहाँ मौसम कैसा है? आपके दिलों का मौसम कैसा है? आपके शहर का मौसम कैसा है? मुझे ज़रूर बताइएगा। गजल उसने छेड़ी का आगाज उसके नामे नामी से हो चुका है, जिसे लोग मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। कोई खुदावंद करीम कहकर इल्तिजा करता है, कोई भगवान कहकर प्रार्थना करता है, कोई वाहे गुरु कहकर अरदास करता है और कोई गॉड या लॉर्ड कहकर घुटने टेकता है। उसे किसी भी नाम से किसी भी वक्त किसी भी लहजा किसी भी आन किसी भी तकलीफ किसी भी दुख किसी भी परेशानी किसी भी मुसीबत किसी भी बीमारी में एक बार दिल की गहराइयों से पुकार कर देखिए, वो हमारी आवाज पर लब्बैक कहता है। और दोस्तों, सच्चाई ये है, हकीकत ये है कि हम सब झुकते एक ही के सामने हैं, मांगते एक ही से हैं, और बेशक वो हम सब का रब है, वो हम सब का रब्बुल आलमी है। जैसा कि आप सब अहबाब जानते हैं, हज़्ब रिवायत अब तो आप आदि हो चुके होंगे, बरसों से सुन रहे हैं प्रोग्राम, कि हम आगाज किया करते हैं एक हसीन गीत के तोहफे से, जिसे हम किया करते हैं अपने तमाम सामईन और नाजरीन के नाम और अपने उन नादीदा लिसनर्स के नाम जो हमारे हमराह ऑनलाइन तशरीफ लाकर प्रोग्राम की हिम्मत अफजाई करते हैं। इस हसीन गीत के तोहफे के बाद, जिसे हम आपकी मोहब्बतों चाहतों और प्यार के नाम करते हैं, और उन अहबाब के बतौर खसूसी कि जिनकी आमद हमारे प्रोग्राम में चार चांद लगाती है और इसकी इज्जत और तौकीर में इजाफा करती है। सो अब वक्त हुआ है एक हसीन गीत के तोहफे से गजल उसने छेड़ी का आगाज करेंगे, जिसे हम कर रहे हैं आप सबकी मोहब्बतों चाहतों और प्यार के नाम। और उसके बाद उन अहबाब के समाए ग्रामी, आपको पता ही होगा जो अहबाब मेरी आमद के साथ ही तशरीफ ले आते हैं, लेकिन मैं उनका तारुफ कराना अपना फर्ज समझता हूँ। तो चलें आज के गजल उसने छेड़ी का आगाज इस खूबसूरत गीत से करते हैं, आप सबकी मोहब्बतों चाहतों और प्यार के नाम।

0: चौधरी रुखसार अहमद साहब, मैं आपका बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि आपकी आमद का सिलसिला शुरू हुआ। बड़ा अच्छा लगता है, बसूरत दीगर तशनगी का एहसास रहता है कि आज कोई कम है प्रोग्राम में। और हमेशा की तरह चौधरी साहब कभी खाली हाथ नहीं आते। मैं अभी जब गीत बज रहा था तो जगह बना रहा था, और यहाँ मैंने उनका भेजा हुआ बेइंतहा खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता सजा दिया है, जिसमें न सिर्फ उनके प्यार की महक शामिल है बल्कि फूलों की खुशबू ने मेरे पूरे स्टूडियो को महका दिया है। कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम जनाब, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड योर लिसनर्स एंड व्यूअर्स। आपका मोहब्बत भरा सलाम तो हम उनकी खिदमत में पेश कर ही चुके हैं, इंशाल्लाह आपका तोहफा भी आपकी नज़र करेंगे। याद रहे कि आप सुनते हैं 3 बजे के बाद अपना पसंदीदा सेगमेंट, जिसका नाम है एक शायर एक गीत दो फनकार। आज के लिए जो गीत मुंतखब किया है वो हमारे बड़े खूबसूरत सादा दिलकश और मोहब्बत करने वाली शख्सियत मोहम्मद अय्यूब चौहान साहब ने गीत को मुंतखब किया है इस सेगमेंट के लिए, जिसके लिए हम तहे दिल से उनके शुक्रगुजार हैं। और इंशाल्लाह आपका मुंतखब करदा गीत हमारे आज के एक शायर एक गीत दो फनकार की जीनत बनेगा। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत से रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मोहम्मद अय्यूब चौहान साहब, बहुत मोहब्बत है आपकी। दोस्तों, वक्त मैं घड़ी की जानिब देख रहा हूँ, वकार मियाँ हमारे अभी तशरीफ लाए थे और वो निकलने की तैयारी किए बैठे हैं, और कहते हैं कि आज मैं स्कॉटलैंड एडिनबरा जा रहा हूँ, बस अपना तोहफा वसूल करूँगा। अहल खाना के हमरा अभी थोड़ी ही देर पहले मैं खाने से फारिग हुआ हूँ और अब चाय पी रहा हूँ और निकलने की तैयारी है। हम आपको वकार मियाँ रोकेंगे नहीं, बल्कि ढेरों दुआओं के साए में कमर्शियल के वक्फे के फौरन बाद आपका तोहफा देकर आपको रुखसत करेंगे। यह आपकी मोहब्बत है, चाहत है और प्यार है कि आप इस कदर बाकायदगी से गजल उसने शेरी में शरीक होकर इसकी इज्जत और तौकीर में इजाफा करते हैं। अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को हमेशा यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, नज़-ए-बद से बचाए और आफतों से महफूज रखे। बढ़ते ही कमर्शियल के वक्फे की जानिब ये याद दिलाते हुए कि आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, जिसकी ये नशियात आपकी खिदमत में 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में, और यॉर्कशायर के रहने वाले हमारे प्रोग्राम DAB रेडियो पर भी सुन सकते हैं। BFD जब अल्फाबेटिकल बी डालिए और जो नाम आना शुरू होंगे BFD लिखा हुआ आए तो उसे सेलेक्ट कर लीजिए और आप हमारे प्रोग्राम DAB रेडियो पर भी सुन पाएंगे।
1: And online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: And the winner is...
4: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
5: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
6: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
4: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
4: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
4: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
4: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274 online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus, or forklift license.

0: फ्रेश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
1: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पैल सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
2: ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
3: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
4: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
3: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
5: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

दोस्तों, इससे पहले कि मैनचेस्टर के सनती शहर चलें और चौधरी रुखसार अहमद साहब आपका तोहफा पेश करें, डॉक्टर माहरुख साहिबा ने आज अर्ली लंच ब्रेक किया है। आपको पता है, ये उनकी मोहब्बत है, चाहत है कि वो अपने कीमती वक्त में से वक्त निकालकर हमारे प्रोग्राम की इज्जत और तौकीर बढ़ाती हैं, जिसके हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। डॉक्टर साहब का तोहफा पेश करते हैं और उसके बाद हम मैनचेस्टर चलेंगे और चौधरी रुखसार अहमद साहब का तोहफा उनकी नज़र करेंगे। उसके बाद रियासत साहब, आपको नहीं भूले हैं, आपका तोहफा भी आपकी नज़र करना है। साथ ही साथ शकील भाई ने जो गीत बताया है वो भी उनकी नज़र करना है। सब होगा, सब होगा, चलते हैं। ये तो एक कारवां है, चल रहा है, इसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं और ये कारवां बनता जा रहा है, सही है ना? तो डॉक्टर साहब ने असलम अंसारी की एक खूबसूरत गजल अदब के तमाम शायकीन के नाम और शेर के मतवालों के नाम भेजी है। कहती हैं कि मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं, हादसा क्या था जिसे दिल ने भुलाया भी नहीं, मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं, हादसा क्या था जिसे दिल ने भुलाया भी नहीं, और जाने वालों को कहाँ रोक सका है कोई, जाने वालों को कहाँ रोक सका है कोई, तुम चले हो तो कोई रोकने वाला भी नहीं, कौन सा मोड़ है क्यों पांव पकड़ती है जमीन, कौन सा मोड़ है क्यों पांव पकड़ती है जमीन, उसकी बस्ती भी नहीं कोई पुकारा भी नहीं, कौन सा मोड़ है क्यों पांव पकड़ती है जमीन, उसकी बस्ती भी नहीं कोई पुकारा भी नहीं, बेनियाजी से सभी क़रिए जहां से गुजरे, बेनियाजी से सभी क़रिए जहां से गुजरे, देखता कोई नहीं है तमाशा भी नहीं, देखता कोई नहीं है तमाशा भी नहीं। और हासिल गजल शेर, डॉक्टर साहब बड़ा खूबसूरत इंतखाब है आपका, कि वो तो सदियों का सफर करके यहाँ आया था, वो तो सदियों का सफर करके यहाँ आया था, तूने मुंह फेर के जिस शख्स को देखा भी नहीं, अरे वो तो सदियों का सफर करके यहाँ आया था, तूने मुंह फेर के जिसको कभी देखा भी नहीं, हाँ हमें को न मिला इसकी हकीकत का सुराग, या सरे पर्दे आलम में कोई था भी नहीं, मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं, हादसा क्या था जिसे दिल ने भुलाया भी नहीं। और आइए डॉक्टर साहब, बेइंतहा खूबसूरत कलाम था आपका, आपका तोहफा लेकर हाजिर हैं, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, कबूल कीजिए।

ये प्रसंग थी हमारी मोहतरम डॉक्टर माहरुख साहिबा की ब्रैडफुट की ससीन वादी से। डॉक्टर साहब बेइंतहा शुक्रिया आमद का हसब वादा। अब हम आपको लिए चल रहे हैं मैनचेस्टर के सनती शहर, जहां हमारे बड़े खूबसूरत लिसनर चौधरी रुखसार अहमद साहब मौजूद हैं, जिनकी मोहब्बत व चाहत और प्यार का मैं कायल हो गया हूं। एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है मोहब्बत का। मुझे एक शेर याद आ रहा है, मोहब्बत की नहीं जाती मोहब्बत हो ही जाती है, ये शोला खुद भड़क उठता है भड़क आया नहीं जाता। मोहब्बत की नहीं जाती मोहब्बत हो ही जाती है, ये शोला खुद भड़क उठता है भड़काया नहीं जाता। आपका तोहफा आदिर है चौधरी साहब, आपकी आमद का बेइंतहा शुक्रिया।

0: On Asian Community Radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885 428 349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
11: क्या आपकी आवाज़ खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
12: Hey, Gopi Dada, ho jaye.

दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी। हमारी नशियात आपकी खिदमत में 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में दुनिया की चार कोनों में इस वक्त से ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर सुना जा रहा है। अभी अभी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं जनाबे परदेसी मजीद साहब। कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? सबको मेरा सलाम और ढेरों दुआएं, और शकील साहब को, रिजवान साहब को भी, और चौधरी रुखसार अहमद साहब को भी मेरा मोहब्बत भरा सलाम, और नवी साहब को भी मेरा सलाम, और तमाम सुनने वालों को मेरा दिल की गहराइयों से सलाम अर्ज कर दें। आपका मोहब्बत भरा सलाम हमने तमाम सामईन और नाज़रीन तक पहुंचा दिया है। जीते रहिए, अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत से रखे। आप खारियां गुजरात से हमारी बज़ में शामिल होते हैं जो हमारे लिए बाइस से तौकीर है।

आपका गीत मैं अपने सेगमेंट के बाद जो हम शुरू करने जा रहे हैं जरूर लिख लूंगा। मुझे उर्दू पढ़ना आती नहीं है, लेकिन आपने जैसे लिखा है मैं पढ़ ही लूंगा, तलाश करना पड़ेगा। ठीक है, मैं नोट कर लूंगा। लेकिन अभी वक्त हुआ है आपके पसंदीदा सेगमेंट एक शायर एक गीत और दो फनकार का। आज का गीत मुंतखब किया है हमारे बहुत ही खूबसूरत लिसनर और सादा और दिलकश शख्सियत के मालिक मोहम्मद अय्यूब चौहान साहब से। मैं चौहान साहब ने जो मुंतखब गीत किया उसके लिए तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, आज का जो गीत अय्यूब चौहान साहब ने मुंतखब किया है एक शायर एक गीत और दो फनकार के लिए, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये 1970 की फिल्म है, चिराग कहाँ रोशनी कहाँ इसका नाम था। इसके हीरो थे नदीम और हीरोइन थी शबनम। तो जो गीत हमने मुंतखब किया है एक नदीम पर पिक्चराइज किया गया है और ख्वातीन को हम पीछे नहीं रखते। जो दूसरा गीत है हीरोइन शबनम पर पिक्चराइज किया गया है। और इस गीत की खूबी ये थी कि इस गीत ने मकबूलियत और शोहरत के तमाम रिकॉर्ड तोड़े और निगार अवार्ड से इसे नवाजा गया। इस गीत जिसके बोल थे हाल दिल हम उन्हें सुनाएंगे, गीतकार थे कलीम उस्मानी, जिनके मुतालिक मैं आपको बता दूं कि उनका असल नाम एहतशामुल हक एहतशाम इलाही था, तखल्लुस कलीम था। और वो पार्टीशन के बाद लाहौर में आबाद हो गए थे। उस शाकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उनका शुमार होता था, लेकिन रोजी रोटी पेट भरने के लिए उन्होंने फिल्मों का सहारा लिया और बेशुमार फिल्मी गीत कलीम उस्मानी तखल्लुस किया उन्होंने और उसके नाम से बेशुमार गीत लिखे जिन्होंने मकबूलियत और शोहरत की तमाम बुलंदियां तय की, बेशुमार अवार्ड से नवाजा गया। आपने बहुत से मिल्ली नगमात भी लिखे, जज्बाए हुब्बुल वतनी सरशार बहुत से कौमी और मिल्ली नगमे आपने लिखे जो टीवी और रेडियो पर नशर होते रहे। कलीम उस्मानी एक तवील अरसे तक इंडस्ट्री से वाबस्ता रहे पाकिस्तानी, आखिरी उम्र में आपकी बिनाई कम हो गई और कलीम उस्मानी अपने आप को हजरत एहसान दानिश के शागिर्दों में शुमार करते थे। ये वही एहसान दानिश हैं जिन्हें शायर मजदूर कहा जाता है। और फिर 2000 को आप लाहौर में इंतकाल कर गए। आपके दो मजमुए कलाम आज भी अदब के शदाइयों के दिल में बसते हैं, दीवार हर्फ और गजल। तो आज की इस गीत के गीतकार हैं जनाब कलीम उस्मानी मरहूम, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और इसे मौसीकी से संवारा था एम अशरफ ने, जिनके बेइंतहा गाने मकबूल हुए, खूबसूरत मौसीकारों में इनका शुमार होता था। बाद में इन्होंने नाहिद अख्तर से शादी भी कर ली थी जो चल न सकी। एम अशरफ की मौसीकी कलीम उस्मानी के बोल 1970 की फिल्म चिराग जलता रहा, मुंतखब किया अय्यूब चौहान साहब ने। और एक शायर तो हो गए कलीम उस्मानी, मौसीकार हो गए इस गीत के एम अशरफ। और जिन गुलकारों ने इन गीतों को गाकर अमर कर दिया
उनमें पाकिस्तान के मोहम्मद रफ़ी, जनाबे मसूद राना और सुरो की एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत माला ने ये गीत गाए थे। तो आइए आगाज करते हैं। एक शायर, शायर कलीम उस्मानी, फिल्म चिराग जलता रहा, फनकार मसूद राना, मौसीकी एम अशरफ।

और दोस्तों आप सुन रहे हैं सेगमेंट एक शायर एक गीत दो फनकार। आज की फिल्म है चिराग कहाँ रोशनी कहाँ। गीतकार हैं कलीम उस्मानी, मौसीकार एम अशरफ और ये गीत शबनम बेगम पर पिक्चराइज किया गया और इस गीत को अमर बना दिया माला बेगम ने गाकर। अल्लाह उनके भी दर्जात बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और मगफिरत फरमाए। आज का ये गीत मुंतखब किया आप सब के लिए सेगमेंट के लिए मोहम्मद अय्यूब चौहान ने। आइए सुनते हैं माला की खूबसूरत आवाज में यही गीत, फिल्म चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, कलीम उस्मानी के बोल, एम अशरफ की मौसीकी।

और दोस्तों अभी आप सुन रहे थे सेगमेंट एक शायर एक गीत दो फनकार। आज के शायर थे कलीम उस्मानी, फिल्म का नाम था चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, मौसीकार थे एम अशरफ और आवाजें थी मसूद राना और माला की। गीत मुंतखब किया था अयूब चौहान साहब ने ओल्डहम से, मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूं। अभी अभी तशरीफ लाई है यह हसीन जोड़ी कराची पाकिस्तान से, जनाब रिजवान रिजवी और उनकी शरीक हयात अम्बरीन जहरा। हम आप दोनों अहबाब को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और मैं ये गीत नोट कर लेता हूं और इसे जरूर शामिल प्रोग्राम करेंगे। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी जोड़ी को सलामत रखे, सेहत से रखे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। खुशामदीद।

दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था कि हम आपको बंडली लिए चलेंगे और शकील साहब की पसंदीदा गजल का तोहफा उनकी नज़र करेंगे, हमारी खुशनसीबी है कि वो बनफ्स नफीस हमारे हमराह मौजूद हैं, तो हम जाते वक्त उनका तोहफा उनकी नज़र कर देंगे ज़ादे राह के तौर पर। अभी तो हम उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई, मुझे लगता है या तो लाइन ड्रॉप हो गई, मैं चेक करता हूँ।

0: शकील भाई आवाज आ रही है मेरी? शकील भाई अब आवाज आएगी आपको मेरी?
1: जी आवाज आ रही है आपको,
0: अब बिल्कुल क्लियर आ रही है।
1: अच्छा,
0: मैं यहाँ पर ये बीमारी है जरा पैनल को छेड़ने की, और फिर एक बटन गलत दबा गए थे, जो भी थे बहरहाल, खैर खस कम जहाँ पाक आपसे बात हो रही यही हमारे लिए बहुत काफी है। खुश आमदीद शकील भाई।
1: तो तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: खालिद सलीम मीर साहब है, नवीद भाई हैं, अपने सूफी अब्दुल करीम साहब है, यजू भाई हैं, चौधरी रुखसार साहब है, चौधरी मुजफ्फर साहब है, हाशमी आसवाल है, मानी परवेज साहब है, मजीद भाई, अला शफिया मनकवी साहब, शाह साहब, सबको तुम
0: आपके तमाम अहबाब तक आपका मोहब्बत भरा सलाम पहुंचा।
1: शुक्रिया। तो ये कलीम उफानी की गजल है।
0: हा अता कीजिए।
1: कहते हैं रात की जुल्फें नीचे भीगी और आलम तन्हाई का,
0: रात की जुल्फें भीगी भीगी और आलम तन्हाई का,
1: कितने दर्द जगा देता है एक चौका पुरवाई का।
0: क्या बात है, क्या मतला है, क्या जानदार मतला है, अता कीजिए। वाह वाह वाह वाह।
1: रात की जुल्फें भीगी भीगी और आलम तन्हाई का, कितने दर्द जगा देता है एक चौका पुरवाई का।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: शुक्रिया। उड़ते लम्हों के दामन में तेरी याद की खुशबू है,
0: उड़ते लम्हों के दामन में तेरी याद की खुशबू है,
1: पिछली रात का चांद है या है अक्स तेरी अंगड़ाई का।
0: क्या बात है, क्या तस्वीर है भाई, अता कीजिए। वाह वाह वाह वाह।
1: उड़ते लम्हों के दामन में तेरी याद की खुशबू है,
0: आहा,
1: पिछली रात का चांद है या है अक्स तेरी अंगड़ाई का।
0: क्या बात है, क्या खूबसूरत शायरी है भाई, वाह वाह वाह, क्या मुरस्सा इंतखाब है।
1: कब से न जाने गलियों गलियों साए की सूरत फिरते हैं,
0: कब से न जाने गलियों गलियों साए की सूरत फिरते हैं,
1: किसी से दिल की बात करें हम शहर है उस हर जाई का।
0: आए है, किसी से दिल की बात करें हम शहर है उस हर जाई का। भाई वाह वाह वाह वाह।
1: इश्क हमारी बर्बादी को दिल से दुआएं देता है,
0: इश्क हमारी बर्बादी को दिल से दुआएं देता है,
1: हमसे पहले इतना रोशन नाम न था रुसवाई का।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: इश्क हमारी बर्बादी को दिल से दुआएं देता है,
0: क्या बात है,
1: हमसे पहले इतना रोशन नाम न था।

0: वाह वाह वाह वाह।
1: शेर हमारे सुनकर अक्सर दिल वाले रो देते हैं।
0: क्या खूबसूरत मिसरा है, शेर हमारे सुनकर अक्सर दिल वाले रो देते हैं।
1: हम भी लिए फिरते हैं दिल में दर्द किसी शहनाई का।
0: आए है क्या तजवी है शहनाई से, अता कीजिए।
1: शेर हमारे सुनकर अक्सर दिल वाले रो देते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: हम भी लिए फिरते हैं दिल में दर्द किसी शहनाई का।
0: हा हा हा हा।
1: शुक्रिया। तो आखिरी शेर कहते हैं, तुम हो कलीम अजब दीवाने,
0: तुम हो कलीम अजब दीवाने,
1: तुम हो कलीम अजब दीवाने, बहुत अनोखी करते हो।
0: आय है क्या
1: का भी अरमान है दिल में, खौफ है खौफ भी है रुसवाई का।
0: क्या मख्ता है जानदार, अता कीजिए अता कीजिए। तुम हो कलीम,
1: तुम हो कलीम अजब दीवाने, अनोखी करते हो। चा का भी अरमान है दिल में,
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह। भाई एक बार मख्ता और अता कीजिए, चाह का भी अरमान है दिल में।
1: तुम हो कलीम अजब दीवाने, बात अनोखी करते हो।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: चाह का भी अरमान है दिल में, खोज भी है रुसवाई का।
0: क्या बात है, क्या दोनों बातें खूबसूरत। भाई वाह वाह वाह, क्या इंतखाब था शकील भाई, दिल खुश कर दिया।
1: शुक्रिया।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: अकबल इंदौरी इनका नाम है।
0: जी जी अता कीजिए। बिस्मिल्ला।
1: निकाबे फितरत उठा रहा हूँ,
0: नकाबे फितरत उठा रहा हूँ,
1: वफा का चेहरा दिखा रहा हूँ।
0: क्या क्या मतलब है साहब, नकाबे फितरत उठा रहा हूँ,
1: उठा रहा हूँ, वफा का चेहरा
0: दिखा रहा हूँ।
1: कभी जो अपना ना हो सका उसी को अपना
0: बना रहा हूँ। भाई वाह वाह वाह वाह वाह वाह, अता कीजिए अता कीजिए।
1: आहा, फितरत उठा रहा हूँ, वफा का चेहरा दिखा रहा हूँ।
0: आहा,
1: कभी जो अपना ना हो सका था उसी को अपना बना रहा हूँ।
0: क्या खूबसूरत बात है भाई।
1: जो मस्त बैठी है आरज़ूएं, उनके शाने हिला रहा हूँ।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: जो थक के जज्बात सो रहे हैं, उन्हें मैं फिर से जगा रहा हूँ।
0: वाह वाह वाह, क्या मुरस्सा इंतखाब है भाई। वाह वाह वाह वाह।
1: हवाएं हो जाएगी मुखालिफ, नहीं मुझको उसकी कोई परवाह।
0: आहा,
1: लहू की बूंदे गिरा गिर गिरा कर मैं अपना गुलशन सजा रहा हूँ।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: शुक्रिया। मैं दुश्मनी के फरेब मैं दुश्मनी के करीब जाकर तलाश करता हूँ दोस्ती को।
0: क्या खूबसूरत बात है, क्या हसीन तजवी है। मैं दुश्मनी के करीब जाकर तलाश करता हूँ दोस्ती को,
1: करीब जाकर तलाश करता हूँ दोस्ती को। जो मुझसे नफरत बरत रहे हैं, उन्हें मैं अपना
0: बना रहा हूँ। भाई वाह वाह भाई वाह वाह वाह वाह, क्या कीजिए भाई। वाह वाह वाह वाह। दुश्मनी के करीब
1: जाकर तलाश करता हूँ
0: दोस्ती को।
1: जो मुझसे नफरत बरत रहे हैं, उन्हें मैं
0: अपना बना रहा हूँ। वाह वाह वाह वाह।
1: सितम तुम्हारा जफा तुम्हारी, जो याद आने लगे हैं मुझको।
0: आहा,
1: गुना कुछ ऐसा हो रहा है, तुम्हें भी मैं याद आ रहा हूँ।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: शुक्रिया। नहीं है हैरत की बात कोई, ये ज़र्फ मेरा है मेरी जुरत।
0: आहा,
1: है जिस जगह बिजलियों की कसरत वही नशे मन बना रहा हूँ।
0: है जिस जगह बिजलियों की कसरत वही नशे मन बना रहा हूँ। बड़ा खूबसूरत ख्याल भाई। वाह वाह वाह वाह, क्या जुर्रत है।
1: जानता हूँ वजूद फूलों का और कांटों है चमन है, मैं जानता हूँ वजूद फूलों का और कांटों का है चमन में।
0: आहा,
1: मैं फूल भी चुन रहा हूँ और खार से भी दामन बचा रहा हूँ।
0: मैं फूल भी चुन रहा हूँ और खार से भी दामन बचा रहा हूँ। क्या खूबसूरत बात है। वाह वाह वाह वाह।
1: तुम्हारे काम आएगा हमेशा ये तोहफा, ये दिल कबूल कर लो।
0: तुम्हारे काम आएगा ये तोहफा, ये दिल कबूल कर लो।
1: तुम्हारा चेहरा दिखाने तुमको एक आईना साथ ला रहा हूँ।
0: वाह वाह वाह वाह भाई वाह वाह वाह, क्या अनोखा ख्याल है। अता कीजिए।
1: तुम्हारे काम आएगा हमेशा ये तोहफा, ये दिल
0: कबूल कर लो।
1: दोबारा चेहरा दिखाने तुमको एक
0: आईना भी साथ ला रहा हूँ। भाई वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह जी।
1: जो मेरा अंदाज गुफ्तगू है वही है इज्जत मोहब्बत अकमल।
0: आहा।
1: जो मेरा अंदाज गुफ्तगू है वही है इज्जत मोहब्बत अकमल। गजल के पर्दे में आज इस अफसाना अपना उनको
0: सुना रहा हूँ। भाई बहुत खूबसूरत वाह वाह वाह वाह भाई वाह वाह वाह वाह मक्ताता कीजिए।
1: जो मेरा अंदाज गुफ्तगू है वही है इज्जत मोहब्बत अकमल।
0: आहा।
1: गजल के पर्दे में आज अफसाना अपना उनको सुना रहा।
0: वाह वाह वाह वाह भाई कमाल कर दिया शकील भाई। बड़ा खूबसूरत और मुरस्सा कलाम मुंतखिब किया और आपको सलाम भेजा है कराची पाकिस्तान से जनाब रिजवान रिजवी और अमरीन जहरा ने और खादियां गुजरात से परदेसी मजीद साहब ने और दोनों ने आपके कलाम को बेइंतहा सराहा और पसंद किया है।
1: वालेकुम अस्सलाम बहुत बहुत शुक्रिया।
0: और शकील भाई आपकी पसंदीदा गजल मैंने क्यों कर रखी थी जो हम जादे राह के तौर पर देते हैं और ये भी बता दीजिए कि आपने आज ये गजल क्यों मुंतखब की। नहीं आपने गजल ये मुंतखब क्यों की ये भी बता दें सुनने वालों को। ओके
1: शुक्रिया
0: अल्लाह हाफिज। दोस्तों शकील भाई मेरा सवाल समझ नहीं पाए मुंतखब करने की वजह इस गजल को और इस गीत को यह है कि आज आशा भोसले जिनकी आवाज में ये नगमा है उनकी सालगिरह है इसलिए आज उन्होंने खराज अकीदत के तौर पे आप सब जानते हैं कि अभी पिछले दिनों आशा भोसले हम सब का साथ छोड़ गई। लता के बाद ये खूबसूरत आवाज़ भी हमेशा के लिए खामोश हो गई। सुरगबाशी आशा भोसले आपके लिए हम कह सकते हैं रेस्ट इन पीस। आपके खूबसूरत आवाज़ और आपके दिए हुए नगमात हमेशा हमारे कानों में रस घोलते रहेंगे। इसकी निशानदेही शकील साहब ने की थी कि आज उनकी सालगिरह थी लेकिन अब वो मौजूद नहीं है तो बस दिल की गहराइयों से यही कह सकते हैं रेस्ट इन द पीस। तो चलते हैं अब हम उस गीत की जानिब जिसे सुनना चाहा था शकील साहब ने और उसके बाद हम आपको खाड़ियां गुजरात पाकिस्तान लिए चलेंगे। शकील भाई बहुत खूबसूरत तोहफे के साथ आप हमारी बज़्म की जीनत बढ़ा रहे थे हम आपके घर की जीनत बढ़ा रहे हैं आपके पसंदीदा गीत से।

और दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी, मैं हूं रिफत अब्बास। मोहम्मद अय्यूब चौहान साहब, हम आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। आप तशरीफ लाए हैं ओल्डहम से और मोहब्बत भरा सलाम तमाम सामीन और नाज़रीन की खिदमत में पेश कर रहे हैं। अब वक्त हुआ है हम तोहफा पेश करने जा रहे हैं खाड़ियां गुजरात पाकिस्तान में परदेसी मजीद साहब का। आपकी आमद का बे इंतहा शुक्रिया। और रिजवान रिजवी साहब और अमरीन जहरा साहिबा, आपका तोहफा हम 4 बजे के कमर्शियल के बाद पेश करेंगे। आपने जो खूबसूरत कलाम भेजा है उसे भी शामिल प्रोग्राम करेंगे। मैं देख रहा हूँ शायद अय्यूब इस कदर तेजी के साथ अगर बत्ती जले बुझे तो समझ जाइए अय्यूब चौहान हैं।

0: दोस्तों, मेरा अंदाजा दुरुस्त था। लाइन पर मौजूद हैं अयूब चौहान साहब। आइए पहले उनसे बात कर लेते हैं और उसके बाद हम आपको खाड़ियां गुजरात पाकिस्तान लिए चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। बहुत बड़ी ठीक है आप?
0: मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप सुनाइए, आप खैरियत से हैं?
1: मैं भी ठीक ठाक हूँ। कुछ अशआर सुनाने हैं।
0: जरूर जरूर अता कीजिए। जी,
1: आज हमें ये बात समझ में आई है।
0: आज तुम्हें ये बात समझ में आई है?
1: आज हमें ये बात समझ में आई है।
0: अच्छा, आपको आपको अच्छा मैं समझा। चलिए, आपको आ गई समझ में। ये अल्लाह का बड़ा करम है यार।
1: आज हमें ये बात समझ में आई है कि मौसम हो और मौसम हर जाई है।
0: आहा,
1: तुमने किस मोड़ पे छोड़ दिया मुझको।
0: वाह,
1: दिल की बात छुपाई तो रुसवाई है।
0: आहा,
1: तेरे बाद बचा ही क्या है जीवन में। मैं हूँ बीजी शान है और तन्हाई है।
0: आए हाय, हाय हाय, तन्हाई है।
1: आज मेरी आंखों में सावन उतरेगा।
0: आज मेरी आंखों में सागर उतरेगा।
1: सावन उतरेगा। आज बहुत दिन बाद तेरी याद आई है।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: आज की रात बहुत भारी है दोनों पर।
0: आज की रात बहुत भारी है
1: दोनों पर। हाँ। आज मुझे वो खत पटाने आई है।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: जाने में क्या सोच के चुप हूँ गुम सुन हूँ। जाने वो क्या सोच के वापस आई है।
0: आई है रिश्वत भाई हैं। वाह वाह वाह।
1: ये मेहमान नवाजी है या और है कुछ।
0: ये मेहमान नवाजी है या और है कुछ।
1: है कुछ मेरे लिए वो चाय बना कर लाई है।
0: अरे भाई मुबारक हो भाई, बहुत मुबारक हो यू भाई।
1: नहीं नहीं नहीं, मेरे लिए कोई भी नहीं चाय बनाता, मैं अपनी खुद ही चाय पीता हूँ।
0: अच्छा,
1: हाँ मेरी स्पेशल चाय होती है।
0: जी जी जी।
1: तो यहाँ पर जो है स्पेशल दूध, स्पेशल टी, एवरीथिंग स्पेशल।
0: ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बिल्कुल सही, यू आर स्पेशल।
1: तो जो चीनी होती है वो भी डिफरेंट ब्राउन चीनी इस्तेमाल करते हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: मेरा अपना एक अंदाज होता है।
0: हाँ, वो तो आपकी बात ही अलग है साहब।
1: तो ठीक है, सबको मैं बहुत बड़ा सलाम दूँ।
0: ओके भाई, अल्लाह हाफिज।
1: गाना मैंने बड़ा जबरदस्त लिखा
0: है। हाँ, मैं गाना अभी लिखता हूँ, मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख लेता हूँ। ओके भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। और आइए दोस्तों, चलते हैं आपको लेकर खाड़ियाँ गुजरात पाकिस्तान, और तोहफा पेश करते हैं अपने मोहतरम परदेशी मजीद साहब का।

0: and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बोबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
8: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
8: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
8: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk।
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
12: और दोस्तों, आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी। मैं हूं रिफत अब्बास, आपका हमारा साथ है 5 बजे तक। हमारी नशियात आपकी खिदमत में 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की ससीन वादी में और दुनिया के चार कोनों में ऑनलाइन www.bradfordasianradio.co.uk पर सुना जा रहा है। और अब वक्त हुआ है, हम आपको कराची लिए चलते हैं, जहां एक हसीन जोड़ी रिजवान रिजवी और उनकी शरीक हयात अमरीन जहरा काजमी ने अदब के शदाइयों और शेर के मतवालों के नाम एक बहुत खूबसूरत कलाम भेजा है और एक गीत सुनना चाहा है। पेश करते हैं परवीन फना सैयद की ये खूबसूरत गजल, उन्होंने आज अदब के शहजाइयों के लिए मुंतखब की है कि काश तूफा में सफीने को उतारा होता, काश तूफा में सफीने को उतारा होता, डूब जाता भी तो मौजों का उभारा होता, काश तूफा में सफीने को उतारा होता, डूब जाता भी तो मौजों ने उभारा होता, हम तो साहिल का तसव्वुर भी मिटा सकते थे, हम तो साहिल का तसव्वुर भी मिटा सकते थे, लबे साहिल से जो हल्का सा इशारा होता, हम तो साहिल का तसव्वुर भी मिटा सकते थे, लबे साहिल से जो हल्का सा इशारा होता, तुम ही वाकिफ न थे आदाब जफा से वरना, तुम ही वाकिफ न थे आदाब जफा से वरना, हमने हर जुल्म को हंस हंस के सहारा होता, तुम ही वाकिफ न थे आदाब जफा से वरना, हमने हर जुल्म को हंस हंस के सहारा होता, गम तो खैर अपना मुकद्दर है सो इसका क्या जिक्र, गम तो खैर अपना मुकद्दर है सो इसका क्या जिक्र, जहर भी हमको बसत शौक गवारा होता, गम तो खैर अपना मुकद्दर है सो इसका क्या जिक्र, जहर भी हमको बसत शौक गवारा होता, बागबां तेरी इनायत का भरम क्यों खुलता, बागबां तेरी इनायत का भरम क्यों खुलता, एक भी फूल जो गुलशन में हमारा होता, बागबां तेरी इनायत का भरम क्यों खुलता, एक भी फूल जो गुलशन में हमारा होता, और तुम पे इसरार फना राज बका खुल जाते, तुम पे इसरार फना राज बका खुल जाते, तुमने एक बार तो यजदां को पुकारा होता, तुम पे इसरार फना राज बका खुल जाते, तुमने एक बार तो यजदां को पुकारा होता। भाई बहुत खूबसूरत इंतखाब, क्या बात है, काश तूफान में सफीने को उतारा होता, डूब जाना डूब जाता भी तो मौजों ने उभारा होता, बहुत खूबसूरत इंतखाब है। अल्लाह आपकी जोड़ी को सलामत रखे, अपने जमान में रखे, नजरे बद से बचाए, और चल रहे हैं उस गीत की जानिब जिसे आपने सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया है। अल्लाह आपको खुश रखे, और इसके बाद हम आपको ओल्डहम लिए चलेंगे।

दोस्तों, अब हम आपको लिए चलते हैं ओल्डहम, जहां मोहम्मद अय्यूब चौहान साहब कहते हैं, माई हार्ट इज रॉकिंग। ये तो बहुत खुशी की बात है, अल्लाह ताला से यूं ही गाता, गुनगुनाता और रॉक करता रखें। हमारी ढेरों दुआएं आपके साथ हैं, आपकी पसंद लेकर हाजिर हैं, कबूल कीजिए।

दोस्तों, ये गीत था रॉकिंग हार्ट मोहम्मद अयूब चौहान साहब का। अब हम आपको लिए चल रहे हैं ये अपने लीज, जहां मौजूद हैं हमारे मोहतरम भगत सिंह साहब, और सुनना चाहते हैं ये खूबसूरत गीत, और कहते हैं कि मेरा मोहब्बत भरा सलाम तमाम सामीन और नाज़रीन की खिदमत में पेश कर दें। मियाँ, ये तो मुद्दतें हो गई, हमने पेश कर दिया था, अब तो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और आपका तोहफा आपकी नज़र कर रहे हैं, कबूल कीजिए। खूबसूरत इंतखाब है।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं गजल उसने छेड़ी, जो अपने इख्तितामी घंटे में दाखिल हो चुका है। कमर्शियल का वक्त करीब हुआ चाहता है। कमर्शियल के बाद सुमैरा बिटिया बावर्ची खाने की रानी ब्रेडफोर्ड 3 से अपनी प्यारी प्यारी कजन्स के नाम एक तोहफा लाई हैं, जो हमें उनकी जानिब से पेश करना है कमर्शियल के वक्फे के फौरन बाद। लेकिन उससे पहले हम खुश आमदीद कहना चाहेंगे अपने दो बहुत खास लिसनर्स को। तशरीफ लाएं शहरयार साहब नॉर्थ हॉल लंदन से, और एक गजल सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और एक गीत सुनना चाहा है सिराज मुनीर साहब ने मोहम्मद रफी की आवाज में मेरी पसंद का। सो हम उनका भी तोहफा शामिल प्रोग्राम करेंगे। बर वक्त आप आ गए हैं, इसलिए हम इसे शामिल प्रोग्राम यकीनन करेंगे। आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो 1413 मीडियम वेव पर यॉर्कशायर की हसीन वादी में। दुनिया के चार कोनों में इस वक्त इसे सुना जा रहा है www.bradfordasianradio.co.uk पर। और बढ़ते हैं कमर्शियल के वक्फे की जानिब। सुमैरा बिटिया, आमद का बहुत शुक्रिया। आमद तो तुम आगाज प्रोग्राम में ही हो गई थी, लेकिन बाहर से आमद का, और अब हम कमर्शियल के बाद तुम्हारा तोहफा नजर करेंगे। ढेरों दुआएं बेटा, कहा मत करो, तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे, और तुम्हारे इस खाने खिलाने और पकाने के शौक को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। बढ़ते हैं कमर्शियल के वक्फे की जानिब।
1: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो ऑन 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंटरप्राइज ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dufferin Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है
11: जी हाँ पल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज पल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रेडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर
12: आपको नहीं पता ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर रोजाना ताजा सब्जियां फल फ्रूट सलाद मीट चिकन आटा दाल चावल और मसाला क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला
7: हर समत मचा है जिसका शोर वो है मैनिंगम सुपर स्टोर मैनिंगम सुपर स्टोर कार्लाइल रोड ब्रेडफोर्ड BD8 8AX फोन ब्रेडफोर्ड 4955555 हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश मैनिंगम सुपर स्टोर
12: मैनिंगम सुपर स्टोर
1: Bradford Asian Radio, our voice, your
7: store, Carlisle Road, Bradford, BD8 8AX, Found Bradford 4955555. Hafte ke saaton din aapki khidmat mein pesh Manningham Superstore.
12: Manningham Superstore.

चल रहे मिडिल्सब्रा, हमारी प्यारी सी बिटिया का तोहफा ब्रैडफोर्ड से एल है मिडिल्सब्रा और अपनी प्यारी प्यारी कजन्स के नाम सुमेरा। आमद का बहुत शुक्रिया बेटा, जीती रहिए।

दोस्तों ये पसंद थी हमारी सुमेरा बिटिया की अपनी प्यारी प्यारी कजन्स के नाम, और अब हम आपको लिए चल रहे हैं नॉर्थ हॉल्ट लंदन, जहां हमारे मोहतरम शहरयार साहब अपने अहले खाना के हमरा गजल उसने छेड़ी से लुत्फंदोज हो रहे हैं। सुनना चाहते हैं खूबसूरत गजल, बता दूं आपको, उन्होंने सिर्फ सिंगर का नाम बताया था और कहा था कि अगर इसकी कोई गजल हो तो अपनी पसंद की इनकी कोई गजल हमारे नाम करें। सो मैंने मुंतखब की है, और उसने इत्तेफाक देखिए कि अगला गीत जो हम आपको डंकास्टर सिटी लेकर चलेंगे, और वो गीत भी उन्होंने हमारे कंधे पर बंदूक रख के चलाई है सिराज मुनीर साहब ने, मोहम्मद रफ़ी का मेरी पसंद का गीत। सो मैं नजर कर दूंगा, जो गीत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब चलते हैं नॉर्थ हॉल्ट लंदन, और पेश करते हैं तोहफा अपने मोहतरम शहजाद साहब और उनके

दोस्तों अब वक्त हुआ है हम आपको डंकास्टर सिटी लिए चलते हैं, जहां मौजूद हैं सिराज मुनीर साहब और उन्होंने हमारी पसंद का मोहम्मद रफ़ी का कोई सा भी गीत सुनने की ख्वाहिश का इजहार किया है। सो हमने उनके लिए एक बहुत खूबसूरत गीत मुंतखब किया है जो हमारे दिल के रफ़ी साहब के तो हर गीत को क्या कहूँ पहले से बढ़कर बेहतर है और दिल में उतर जाता है, लेकिन ये गीत ज़रा ज़्यादा दिल के करीब है, जिसे हम सिराज मुनीर साहब आपकी ख्वाहिश पर आपकी नज़र कर रहे हैं। अहले डंकास्टर को मेरा सलाम पहुँचे, आपकी आमद का बे इंतहा शुक्रिया। आपके लिए मैंने इस खूबसूरत गीत को मुंतखब किया है, कबूल कीजिए।

दोस्तों, इसके साथ ही गज़ल उसने छेड़ी अब इख्तिताम पज़ीर हुआ। मैं भी इंतहा शुक्रगुज़ार हूँ अपने उन तमाम अहबाब का जिन्होंने तशरीफ़ लाकर हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाए और इसकी इज्जत और तौकीर में इजाफा किया। मोहम्मद फैयाज़ ख़ान साहब प्रोग्राम के इख्तिताम पर तशरीफ़ लाए हैं, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और अगर कुछ सुनना चाहते हैं तो कल के प्रोग्राम में तशरीफ लाइए। आपकी आमद हमेशा हमारे प्रोग्राम के लिए बाई से मुसर्रत होती है और बाई से तौकीर होती है। फैयाज खान साहब, हम आपसे माजरत खां हैं क्योंकि अब तो हम इजाज़त ले रहे हैं अपने तमाम सामीन से जो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और इसकी इज्जत और तौकीर बढ़ाई। उनका जो फ़र्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मोहब्बतों के पैगाम पर रुफ़त अब्बास को भी इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जाते जाते रियाज साहब, आपका तोहफा आपकी नज़र कर रहे हैं, आपकी आमद का बेइंतहा शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत से रखे और आपके कारोबार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अब मोहब्बतों के पैगंबर रिफत अब्बास को इजाज़त दीजिए। आपका हमारा हम सबका अल्लाह हाफिज़ो नासिर।

0: on 1413 AM, DAB+, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BDH8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डाइक ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 अरुली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .UK
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर
10: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं
7: डिजिटल क्वालिटी तेज और दोस्ताना सर्विस मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678
7: asianweddingsuk.com जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

मोहब्बत पलकों पे कितने हसीन ख्वाब सजाती है, फूलों से महकते ख्वाब, सितारों से जगमगाते ख्वाब, शबनम से बरसते ख्वाब। फिर कभी यूं भी होता है कि पलकों की डालियों से ख्वाबों के सारे परिंदे उड़ जाते हैं और आंखें हैरान सी रह जाती हैं।

0: Number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो के पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड, 01274201679।
9: UK।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है?
10: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रेडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड, ब्रेडफोर्ड, 9627229622।
11: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: अजान का वक्त हुआ चाहता है इस अजान के लिए हमें तावन हासिल है कूपर हॉल सोलिसिटर्स लिस्टर हिल्स साइंस पार्क कैंपस रोड ब्रेडफोर्ड BD71HR
1: अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले सामीन ब्रेडफोर्ड और इसके मुजाफात में अजान का वक्त हुआ चाहता है।

0: प्यार हुआ मुझे शर्माते हैं वो, नशे में हूँ मैं लड़खड़ाते हैं वो।
1: जनाब मोहम्मद अजीज की आवाज में समात फरमाइए जनाब नफीस आलम की गजल।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 एथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन थाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है?
11: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now, 01274 306677.

तारों में चमक, फूलों में रंगत ना रहेगी। अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी सलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BDH8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है क्या आप में बोलने की जरूरत है अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए याद रखिए अगर आपको बड़ी-बड़ी छोड़ने की आदत है तो यह आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए ब्रैडफोर्ड Radio.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंटीपर ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
7: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे।
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम है आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रैडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर।
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रैडफोर्ड, 01274201679।
9: UK।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रैडफोर्ड में क्या है शोर?
11: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी गो स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर सम्त मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रैडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
11: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
5: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
6: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
7: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड 3।
6: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
7: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
6: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइट, ट्रैफिक लाइट, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
8: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
9: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
8: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
9: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, टी रूम, 46 अरूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
6: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
9: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
6: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
9: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
6: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
9: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk।
10: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274
11: Bradford Asian Radio.
12: The Hindi Urdu Music Show on Bradford Asian Radio.

ऐसा मीन अभी आप समाप्त कर रहे थे बहुत ही खूबसूरत गीत, और थोड़ी देर के लिए बाहर मेहमान आए थे, उनको हमसे से लेने के लिए गए थे, इसलिए थोड़ा सा गीत आप सुन रहे थे, एक हल्का फुल्का भी। और इस दौरान चौधरी मुजफ्फर साहब आने वाला गीत आपके नाम करेंगे, और आपकी पूरी लिस्ट सामने रखी हुई है, आपके सब दोस्तों के नाम करना चाहेंगे। चौधरी आसफ रियासत हैं, चौधरी फरियाद हैं, चौधरी रुखसार हैं, और महबूब इलाही जी हम हैं, जनाब तारक जुल्फी साहब हैं, जवेद मीर हैं, तारक भट्ट हैं, शकील हैदर हैं, शकील हैदर हैं, आमर शहजाद साहब हैं, चौधरी उस्मान हैं, सफ़ीउल्लाह भाई हैं, वाजिद भाई हैं हेडस्पीड वाले, और अयूब हैं, और चौधरी मनीर चक्की वाले, शरफुद्दीन पापा, और ख्वाजा शफीक, और सलीम जनाब उर्फ रफ़ी, अतीका जी एंड जंगी ड्यूसबरी, और भाई नवीद, और भाई राणा साहब आपके नाम, नवीद साहब आपके नाम भी यही गीत होगा आने वाला, चौधरी साहब स्पेशल आपकी तरफ से सब दोस्तों के नाम। और आइए सुनते हैं खूबसूरत गीत, शेर व शायरी बाद में हो जाएगी।

0: AM, DAB+, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: Your business being heard on the radio.
3: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
4: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
5: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
6: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
5: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
6: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
5: फर्स्ट चॉइस
6: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
5: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
6: 01274317644।
7: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
8: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
6: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
8: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
6: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
8: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
6: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
8: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
6: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
8: बालियां, अंगूठियां और हार,
6: जो दुल्हन करे सिंगार,
8: आज ही मामू काकी की दुकान,
6: खालिस सोने की पहचान,
8: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
6: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
8: आपकी शान
6: हमारी आन,
8: क्वालिटी की पहचान,
6: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
8: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
9: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
6: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है?
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
6: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 Rooley Avenue, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहां पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 पाउंड से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
6: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, पॉन्ड, ब्रैडफोर्ड, 9627229622।
11: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
12: You're listening to Bradford Asian Radio,
13: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.

सामिन, अभी आप समाप्त कर रहे थे बहुत ही खूबसूरत गीत, और इस दौरान आपको पता है हमारे स्टूडियो में तशरीफ ला चुके हैं जनाब हमारे मेहमान खसूसी जनाब भाई पी साहब, तो उनको हम खुश आमदीद कहते हैं और देखते हैं आज हमारे लिए वो कौन सा तोहफा लेके आए हैं।

0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह।
0: कैसे हैं जी भाई शकील साहब, आपको खुश आमदेद कहते हैं।
1: शुक्र है आपकी दुआएं, आप सुनाए कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का।
1: तो मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम साहब की तरफ
1: से। सलीमी साहब सुन रहे हैं, अली भाई हैं, चौधरी रुखसात साहब है, चौधरी मुजफ्फर साहब है, जहांगीर भाई, चौधरी आसिफ यासर साहब है, नवीद भाई हैं, तारिक भट्ट है, तारिक सुल्फी साहब है, इकबाल भाई हैं, और हमारे जो मेहमान आपके आए हैं हैदर साहब हैं
0: जी,
1: उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम जी सबकी तरफ से।
1: तो ये गजल है एक, ये शैला अम्बालवी इनका नाम है। वो कहते हैं मोहब्बत की दुनिया में आकर तो देखो,
0: मोहब्बत की दुनिया में आकर तो देखो, वाह,
1: किसी को तमन्ना बनाकर तो देखो,
0: वाह वाह बहुत खूब,
1: मेरे इश्क को आजमा कर तो देखो,
0: मेरे इश्क को आजमा कर तो देखो,
1: मेरी जान पर हशर बफा कर देखो, उठा कर तो देखो,
0: वाह बहुत खूब
1: शुक्रिया। कोई शय निगाहों से बाहर नहीं है, निगाहों से पर्दा हटा के तो देखो,
0: हाय हाय हाय, निगाहों से पर्दा हटा कर तो देखो, वाह वाह बहुत खूब।
1: मोहब्बत की दुनिया है राहत की दुनिया,
0: आहा,
1: मोहब्बत की दुनिया बसा कर तो देखो,
0: बसा कर तो देखो, वाह बहुत खूब।
1: समझ जाओगे दर्द दिल चीज क्या है,
0: समझ जाएंगे दिल दर्द दिल चीज क्या है, वाह,
1: कभी इश्क की चोट खा कर तो देखो,
0: वाह वाह वाह वाह मुकर्रर मुकर्रर।
1: नहीं दिल लगी दिल किससे, नहीं दिल लगी दिल किसी से लगाना, किसी से जरा दिल लगा कर तो देखो,
0: वाह बहुत खूब बहुत खूब।
1: यही राह हस्ती को रोशन करेगा,
0: यही राह हस्ती को रोशन करेगा,
1: चिरागे मोहब्बत जला कर तो देखो,
0: वाह वाह वाह वाह, चिरागे मोहब्बत जला कर तो देखो, बहुत खूब।
1: हमें ताबे दीदार है या नहीं है, मुकाबिल निगाहों के आकर तो देखो,
0: वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब।
1: हमारी नजर में बड़ी वसरते हैं, हमारी नजर में बड़ी वसरते हैं, हमारी नजर में समा कर तो देखो। तो आखिरी शेर कहते हैं, बता देंगे हम इश्क है नाम किसका,
0: आहा वाह,
1: बता देंगे हम इश्क है नाम किसका, हमें अपना शैदा बना कर तो देखो,
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: ये गजल से शैदा बालवी होती
0: जी,
1: तो रहते को सुना देता हूँ मैं गजल आपको
0: जी जी।
1: ये शायर सियालकोटी हैं लिखने वाले
0: जी।
1: वो कहते तुम्हें मिल कर भी अक्सर दिल के हर मान दिल में रहते हैं,
0: वाह,
1: तुम्हें मिलकर भी अक्सर दिल के हर मान दिल में रहते हैं, तुम्हारे चाहने वाले बड़ी मुश्किल में रहते हैं, उसे नाशाद करने का उसे बर्बाद करने का,
0: वाह,
1: गिला है तो उन्हीं से है जो मेरे दिल में रहते हैं,
0: वाह वाह बहुत खूब।
1: रजाकाराने उल्फत मौत से हरगिज नहीं डरते, हमें देखो कि हर दम कोई चाहे का दिल में रहते हैं,
0: वाह वाह बहुत खूब
1: शुक्रिया। तलाश यार की फुर्सत अगर होगी तो कर लेंगे,
0: वाह,
1: अभी तो रात दिन हम जस्ट जिए दिल में रहते हैं,
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: जिनों की खामकारी चैन लेने ही नहीं देती, हम उनको ढूंढते हैं जो हमारे दिल में रहते हैं,
0: हमको ढूंढते हैं, क्या
2: क्या बात है, आपके ज़ौक को देख
1: के हमें को है खुदा कुछ हो गया है या जाने, हमें को है खुदा कुछ हो गया है या जमाने को,
0: वाह,
1: हमारे दिले शिकवे हर एक महफिल में रहते हैं,
0: वाह वाह बहुत खूब।
1: दिले बीमार की हालत न बदली है न बदलेगी,
0: वाह,
1: दिले बीमार की हालत न बदली है न बदलेगी, हमारे चार अगर क्यों सही इलाज हासिल में रहते हैं,
0: वाह वाह बहुत खूब बहुत खूब।
1: यह खुशे कहते हैं, दिले नादान की आदत मैं बहुत बेजार हूँ,
0: واہ واہ بہت خوب بہت خوب,
1: شکریہ, بڑی مہربانی کام دینے کے لیے,
0: بہت شکریہ بھائی شکیل صاحب تشریف لانے کا, بہت بہت شکریہ. اور مزہ آ جاتا ہے جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں محفل میں, چار چاند لگ جاتے ہیں, بڑی مہربانی. تالیوں کی گونج میں آپ کو الوداع کہتے ہیں, اور بعد میں ہمارے جو ساتھی ہیں وہ آپ کے لیے تعریف میں کچھ الفاظ کہیں گے. ابھی ان کا میک کچھ سسٹم میں کلیئر نہیں ہے, تو ان کو آن ایئر لیتے ہیں, پھر وہ آپ کے بارے میں کچھ کہیں گے ضرور. ٹھیک ہے جی, آپ کو اللہ حافظ کہتے ہیں, تالیوں کی گونج میں الوداع کہتے ہیں. جی یہ تھے بھائی شکیل صاحب, آپ کو پتہ ہے تشریف لاتے ہیں, بہت ہی پیارے کلام سننے کو ملتے ہیں, پنجابی بھی اور اردو بھی.

0: Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दूल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BDH8DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट्स से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD6 1DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रैडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 एथिंगटन स्ट्रीट ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज UK
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर
10: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं
7: डिजिटल क्वालिटी तेज और दोस्ताना सर्विस मेल और फीमेल फोटोग्राफर
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678
7: asianweddingsuk.com जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं है
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
11: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: सामिन बहुत गीत भी बहुत प्यारा था, लेकिन दोस्त भी बहुत प्यारे हैं जो तशरीफ ला चुके हैं, तो इस गीत को रोकना पड़ेगा हमें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेहमान का टाइम हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। गीत वालों को हम कहते हैं रफ़ी साहब थोड़ी देर रुक जाएं आप, तो आपको दोबारा हम फिर यहाँ से रुकेंगे, वहीं से फिर शुरू करेंगे। और जनाब तशरीफ ला चुके हैं चौधरी रुखसार साहब, उनसे मिलते हैं और देखते हैं वो आज हमारे लिए क्या तोहफा लेके आए हैं। और तालियों की गूंज मने खुश आमदीद कहते हैं सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम चौधरी रुखसार साहब।
1: अल्हम्दुलिल्लाह मिन अश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चश्मे रोशन दिले माशा बा कमाल लाजवाब बहुत आला बा इज्जत बावकार बाजोक बाशोक हर दिल जी शख्सियत बहुत नफीस बहुत लतीफ और बहुत शफीक बाजमत बारिफत मेरे प्यारे भाई महबूब लाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात।
0: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात।
1: मोहतरम कैसे हैं आप? और माशाल्लाह आपके साथ जो हस्ती मेरे लिए नहायत काबिले इज्जत काबिले एहतराम मोहतरम मुकर्रम अरफान हैदर साहब जो आपके साथ विराजमान है, उनको भी मोहब्बतों भरा चाहतों भरा उल्फत भरा नहायत मोहब्बत नहायत अकीदत और नहायत उनसे बहुत बहुत सलाम दुआ।
2: वालेकुम सलाम, सलामत रहे चौधरी साहब, सलामत रहे माशाल्लाह।
1: जी सर माशाल्लाह मुझे भी आज पहली दफा ही आपको सुनने की सादत हासिल हुई है और माशाल्लाह आपकी पोएट्री जो होती है कमाल लाजवाब है माशाल्लाह। और हम आपको अठारह दिल की गहराइयों से एशियन रेडियो जो है ब्रेडफोर्ड का इसमें जनाब वेलकम करते हैं।
2: जज़ाकअल्लाह जी, खुश आमदीद।
1: थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।
2: मैं आपको पता है चौधरी साहब, मैं आपको दो चार जुबानों में ना वेलकम करना चाहता हूँ। हरकल्ला राशा वेलकम खुश आमदीद, पांच जुबानों में सर।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह ठीक हो गया सर, मेरे हाल पांच जुबाना काफी है। क्योंकि फिर मन में टाइम लग जाए ना रखा अच्छा रखा तक तो फिर याद कर देखिए। सर बहुत अच्छा लगा, यकीन करें कि माशाल्लाह जितने बाजोक बाशोक माशाल्लाह आपकी शख्सियत है तो माशाल्लाह इंशाल्लाह। वो कहते हैं ना कि वक्त अच्छा गुजरेगा जब मिल बैठेंगे दो दीवाने के।
2: सही बात है, सही बात है, बिल्कुल।
1: तो बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला आपके सलामत रखे। और मैं एक पोएट्री तो माशाल्लाह आपकी खिदमत में, क्योंकि मैं तो बासियत एक छोटा सा ताला बिलम ही आता हूँ, यकीन करें कि ये महबूब लाई भाई मुझे जानते हैं और माशाल्लाह जो मुझे सुनते हैं वो, क्योंकि मुझे खास कोई पढ़ने का कोई इतना ना कोई, वो कहते हैं कि अंदाजे गुफ्तगु की भी मुझे कोई अपनी वाकफियत नहीं है, यकीन करें। तो मैं बस ये तो तालिब इल्म आपको सबक समझ के सुनाने आता हूँ, क्योंकि सभी तो मेरे उस्ताद हैं।
2: सर आप हमारे लिए उस्ताद मोहतरम है और आप पुराने हमारे सामाइनों में से हैं और माशाल्लाह हमारी गुडविल है आप, हम आपके लिए ताबेदार, आपकी सर्विसेज के लिए हम बैठे हुए हैं और आपको इंशाल्लाह सुनना पसंद करेंगे।
1: अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और माशाल्लाह ये मेरी खुश नसीबी है कि मैं इतने बड़ी शख्सियात के सामने जब कुछ करूँ। और अभी अभी हमारे उस्ताद मोहतरम जनाब मोहतरम मुकर्रम जनाब शकील साहब भी आए थे माशाल्लाह, तो वो भी हमारे उस्तादों का दर्जा रखते हैं। आज आज जो कुछ मैं बोल रहा हूँ ना ये मैं सब उन्हीं की बदौलत बोल रहा हूँ, यकीन करें। तो उनको भी मैं अपना सबक ही सुनाता हूँ यकीन करें, और उनकी मौजूदगी में वो पढ़ना मेरे लिए जो ना यकीन करें बहुत बड़ा, वो कहते हैं ना कि सार सार सामने नजर आ रहा है, क्योंकि उस्तादों की बगैर मौजूदगी में तो पता पढ़ सकता है लेकिन उस्तादों की मौजूदगी में पढ़ना जो होता है ना वो बहुत मुश्किल होता है जी। हाँ तो सबसे पहले तो जनाब मोहतरम सईद राद अदर और जनाब सईद हसन साहब हैं, मोहतरम सकूल साहब हैं, जंगीर भाई हैं, चौधरी मुजफ्फर साहब हैं और हमारे प्यारे भाई महबूब लाई साहब हैं, चौधरी फयाज साहब राणा वजीर साहब हैं और चैंपियन परवेज खान साहब हैं, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। तो मैं सर एक तो पोएट्री दे के आऊँ, मैं पंजाबी की वो मैं करूँगा जनाब महबूब लाई भाई के नाम
0: जी,
1: और एक उर्दू की है वो जनाब अरफान हैदर साहब को जो है ना मैं इंशाल्लाह वो डेडिकेट करना चाहता हूँ, ठीक है
0: जी।
1: तो मैं पहले जो है उर्दू की जो है मैं क्योंकि मेरे मेहमान है तो मैं पहले उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ। सर
0: जी जी प्रशांत
1: शहर लिखते हमारा शहर से कोई वास्ता नहीं
2: जी,
1: मंजिल को जाने का कोई रास्ता नहीं।
0: वाह
1: تلاش کر کے تھک گئے ہیں اس حسینہ کو,
0: اس
1: کا بھی ہم سے کوئی رابطہ نہیں رہا.
0: واہ,
1: حکم یہ ہے کہ ہم بھی رہے ناقص العقل,
0: ہم بھی رہے ناقص العقل,
1: شاید اسی لیے اس کا بھی کوئی آسرا نہیں رہا. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. جی تو کرتا رہتا ہے اکثر, مگر اس سے ملنے کا کوئی دلاسا نہیں ملا.
0: واہ, بہت خوب.
1: آخری شعر آپ مجھے کرنا چاہتا ہوں.
0: ارشاد,
1: اب بج گیا ہے امیدوں کا چراغ انجم, ہمارا اپنا بھی کوئی لاڈلا نہیں رہا.
0: واہ واہ, بہت خوب,
1: بہت شکریہ سر. اور ایک شاکر شجا بادی کی چھوٹی سی نظم ہے,
0: جی جی,
1: میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. لکھ دیں, میری زندگی بگڑے جاگا ہے, ایک پن بات تن بات کوئی نہیں, ہاں پوٹے کر کے سٹ دیں گے,
0: ہاں
1: ہر کوئی چڑ میں کلیاں, ٹھٹھے پھول کو چڑ بہ کوئی نہیں,
0: واہ واہ,
1: ہوں بس کر شاطر راون کو, پیڑ دھاڑ کو سن بہ کوئی نہیں.
0: واہ واہ واہ واہ,
1: پر بہت شکریہ نبی بھائی. اب میں بس, کیونکہ میرا سننا کے اندر تعلق تو ہے نہیں, لیکن بس جو مجھے آیا وہ میں آپ سے گوٹ گزار کر دیا.
0: زبردست جی, جو آیا بہت خوب آیا, بڑا زبردست آیا.
1: بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اور آپ کا یہ پیار, یہ محبت, یہ چاہت, یہ الفت ہمارے دلوں میں ہمیشہ ہے اور ہمیشہ ہی انشاءاللہ رہے گی.
0: انشاءاللہ جی, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, آپ کو بھی اسی طریقے سے تشریف لاتے رہے اور چار چاند لگاتے رہے ہماری محفل میں.
1: سر میری بہت سی دعائیں آپ کے ساتھ اور آپ کے ماشاءاللہ خوبصورت مہمان کے ساتھ اور آپ کے پورے ریڈیو کے ساتھ بہت سی دعائیں ہیں, اور میں اس امید کے ساتھ آپ سے الوداع ہو رہا ہوں کہ آپ مجھے اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں گے.
0: آمین. انشاءاللہ جی, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, ہمیشہ خوش رہیں, آباد رہیں جناب, پھولوں کی طرح کھلتے رہیں اور مسکراتے رہیں.
1: اللہ حافظ.
0: تالیوں کی گونج میں جناب الوداع کہتے ہیں. اللہ حافظ جی, اللہ حافظ. جی بھائی عرفان صاحب, کیسی رہی شاعری جی؟
2: ماشاءاللہ چودھری صاحب نے کمال کر دیا, ایک تو انہوں نے شاعری بولی اور سیکنڈ جو ہے نا انہوں نے سر کے ساتھ بھی ہمیں سنایا.
0: جی جی,
2: زندہ باد زندہ باد. چودھری صاحب آپ سلامت رہے, ہماری بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ.
0: بالکل. یہ بھائی عرفان, میں کہتا تھا کہ جیسے میں ابھی بات کر رہا تھا کہ میں شوق سے وہ جانے لگ گیا اکیڈمی, تو فیسیں میں نے دونوں اکیڈمیوں میں دے دی. یہ ہوتا شوق ہے نا, ہوتا ہے کہ فوراً سیکھ جائے.
2: بالکل,
0: تو کتابیں سیکھنے سے, خریدنے سے تو بندہ عالم نہیں بن جاتا نا, پڑھنی پڑتی ہے باقاعدہ اس کی پریکٹیکل. جی تو وہ ہوا, تو میں جب جاتا تھا تو یہ جو تھی نا کلاسیکل جو تھی کلاسیں جہاں ہوتی تھیں وہاں, وہ بسوں کا اڈا تھا.
2: ماشاءاللہ,
0: بسوں کے اڈے پر تو پھر جب میوزک اوپر تبلا بجتا تھا نا, ٹرکوں والے جو آئے ہوتے تھے نا لوگ, وہ نئے نئے علاقوں سے وہ اوپر آ جاتے تھے نا, جہاں وہ ریاضت ہو رہی ہوتے تھے. ہم نے تو آپ کو بتایا میرا کشور کے گیت زیادہ گاتا تھا, وہی میری آواز ایسی تھوڑی باری ہے, تو کبھی کبھی مہندی حسن کے بھی شوق سے نا اپنے گلے کو تھوڑا دبا کے کر لیتا ہوں. تو وہ جو وہاں لوگ آتے تھے وہ اپنے اپنے علاقہ ہی جب گیت گاتے تھے نا, تو وہ تبلے والے کو کہتے ہیں, کیونکہ ان کا تو کام ہوتا ہے, وہ سمجھ جاتے ہیں جو سروں کو فوراً, تو وہ کہتے تھے یہاں یہاں ایسے, اب میں یہ گانے لگا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے سٹارٹ ہو جاؤ. تو پھر نئے نئے ایسے نا کلام سننے کو ملتے تھے گاؤں کے, وہ اپنی جو مائی ٹپے بناتے ہیں وہ کتابوں میں ہوتے ہی نہیں ہیں.
2: بالکل,
0: تو وہ ہمیں سننے کو ملتے تھے, بہت مزہ آتا تھا.
2: ماشاءاللہ, جو سٹارٹنگ ہے میرے خیال سے اس میں آپ کے اندر شوق آ گیا اس چیز کا, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ پہلے ٹی ویز کا کام کرتے تھے اور اس کی ریپیئرنگ کرتے کرتے آپ گنگناتے تھے. ماشاءاللہ, بڑی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ آج بھی بریڈ فورڈ میں اور لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی آواز سے.
0: الحمدللہ, یہ میں ابھی بچہ تھا تو شروع کہاں سے ہوئی, مقدر کا سکندر فلم, ویڈیو فلم ابھی نئی نئی آنی شروع ہوئی تھی, ویڈیو نئے, جس وقت میں کام سیکھ رہا تھا اس وقت میری عمر تقریباً 15 سال تھی, تو یہ ویڈیو ابھی نئے نئے آئے تھے, اور جب ویڈیو آئے سب سے پہلے یہ فلمیں آئی تھی, مقدر کا سکندر ہو گیا, سوہاگ, شولے, سب سے زیادہ پہلے جو نا یہی فلمیں آئی امیتابھ بچن.
2: تب آپ یہ وہ وی سی آر میں دیکھا کرتے
0: ویڈیو فلم, ہم تو باہر ملک کے ہوتے تھے فلیج میں,
2: تو
0: جی तो वो सब से तीन वीडियो फिल्में जो है मैंने पक्की रेडियो उधर रख ली थी।
2: अच्छा,
0: उसके गाने मैंने इतने सुने, सबसे अच्छा गाना मुझे लगता था मुकद्दर का सिकंदर, साथ ही रे तेरे बिना क्या
2: चीज। क्या बात है, क्या बात
0: तो
2: है।
0: वो मैंने रियाजत गुनगुनाते रहना, जिस वक्त मैं ट्राई दिया आपको बताया ना स्टूडियो में जाके उधर, तो वो शाह साहब कहते हैं आपने रियाजत कहाँ की है, मैंने रियाजत गाड़ी होती थी गाड़ी में भी सुनते रहते थे, तो उधर भी जो गीत मुझे, मैं कहता हूँ कुछ आदतें ऐसी होती हैं इंसान की, खराबी कह सकते हैं कि उसमें आदत होती है बुरी, वो मेरी यही बुरी आदत है। मैं सिगरेट नहीं पीता ना, मुझे कोई शौक है ऐसा,
2: नो
0: बिल्कुल नहीं, चाय भी बहुत कम पीता हूँ मैं, लेकिन यही शौक है, गीत कोई अच्छा लग गया तो उसको इतना बार बार सुनना है कि बस सुनते जाना जब तक मेरा सर दर्द नहीं होता,
2: जिंदाबाद।
0: तो ऐसे जो खास करके डीप जो राग वाले, जैसे मुकद्दर के सिकंदर का और साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, ये हो गया सलामी इश्क मेरी जाओ लय जो डूब के जाती है ना, वो मुझे बहुत पसंद
2: ये है। जो आप बता रहे हैं ना, बाकी सॉन्ग्स तो आपके मैंने सुने हुए साथ ही रहे, ये आपने थोड़ा सा गुनगुनाना है, थोड़ा सा नहीं बल्कि दो अशआर, ताकि हमारे सामईन जो है वो भी सुने और मैं भी आशा।
0: चलिए जी, तो बात करते,
2: मेरी एक छोटी सी कावश डिमांड है कि आप ये हमें सुनाए।
0: मुझे वैसे गीत आज तक कोई याद नहीं हुआ, लेकिन ये मैं गा के सुनाता हूँ। लाउड स्पीकर आगे पीछे हो जाए तो उसमें कोई बात नहीं, आप माफ कीजिएगा। तो ये शुरू करते हैं, देखते हैं टाइम है।
2: आज आपकी पुरानी यादें जो है ना वो मैं सामने ला
0: रहा। अच्छा होता है दोस्तों से बैठ के, इसलिए दिल की बातें बोलते हैं।
2: सही बात,
0: आप दिल की बातें करते हैं, अपनी पुरानी बातें करते हैं, दिल खुश होता है, और ये जो चीज है ना बहुत फायदेमंद होती है सेहत के लिए। नहीं तो बंदा गुम ही रह जाता है, और वो गमगीन रह के इंसान की सेहत को इतना वो नहीं होता। कहते हैं जितने मैंने देखा सुना कुछ लोगों से, जो हिकमत का मेरे दादाजी हकीम थे, तो वो जब मैं अब तो यूट्यूब पर सब कुछ सुनते रहते हैं, तो जब सुनते हैं तो बोलते हैं सबसे ज्यादा आपको टेंशन खत्म कब होती है, आप पुराने दोस्तों में बैठे
2: बिल्कुल ऐसे
0: खुल के बात करते हैं,
2: बिल्कुल ऐसे
0: अपना जो माहौल था उसके बारे में जब बात करते हैं तो आपका दिल खुश,
2: जो आपका टाइम गुजरा होता है आप वो शेयर करते हैं कि फला दिन को फला ईयर में हमने ऐसे किया, गैदरिंग रखी, बैठे हुए थे, तो वो बड़ी पुरानी यादें होती हैं और बड़ी जबरदस्त।
0: तो मैं सोच रहा हूँ गाना जो मैंने रोका हुआ था ना,
2: ठीक है,
0: इसको थोड़ा मुकम्मल कर लें फिर मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक
2: है,
0: क्योंकि गाना मेरी बहुत पसंद है। मैं देख रहा हूँ ब्रेक का टाइम है, तो दो बोल काफी नहीं होंगे। Okay.

कोई पूरत है तू हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: आशिक मेरा नाम है
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है
1: ऐसे ही हो तुम ऐसे ही हो हम खुशी

0: हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।
1: मैं हूँ यहाँ

0: Mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
1: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका।
2: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
1: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
2: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
1: फर्स्ट चॉइस
2: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
1: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
2: 01274317644।
3: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
4: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
2: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
4: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
2: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
4: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्राडफोर्ड, BD8 ATY।
2: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
4: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
2: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
4: बालियां, अंगूठियां और हार,
2: जो दुल्हन करे सिंगार,
4: आज ही मामू काके की दुकान,
2: खालिस सोने की पहचान,
4: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
2: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
4: आपकी शान
2: हमारी आन,
4: क्वालिटी की पहचान,
2: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डुफर्ट लेन, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
4: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा।
2: अरे सेफ पे राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
4: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
2: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ पे राइडर,
4: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
2: 33 वेटले लैंड, ब्रेडफोर्ड,
4: 01274201679। UK।
5: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
2: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
5: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
2: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
6: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
7: This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: अच्छी यादें कोई भी है ना वो फूलों की माने
1: हाँ
0: होती है।
1: बिल्कुल
0: तो मैं
1: बिल्कुल
0: चाह रहा था कि आज आपको फिर एक बार वो जमाना याद आए, वो दोस्त याद आए, वो जगह याद आए जो आपकी याद में है। ठीक है, तो
1: जी
0: जजाकल्ला सर, बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू जी,
0: सलामत रहें।
1: थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी हाँ, अभी आने वाला गीत जो होगा ये था, इनकी फरमाइश पर मैंने दो बोल शामिल किए। कोशिश की, मुद्दत हो गई हमें गाए हुए ये गीत, लेकिन अभी आने वाला गीत जो है ना, ये भी गीत मेरा बहुत पसंदीदा गीत है। ये आपके नाम करूँगा जब भी मैं कभी कभी गाता हूँ,
0: जी,
1: कभी कभी आपके प्रोग्राम में हिस्सा लिया करेंगे तो ये गीत
0: जी
1: का
0: जी
1: भी शामिल करेंगे। तो ये गीत आपके नाम और सभी साथियों के नाम।

बात कर रहे थे, बहुत खूबसूरत गीत। और मैं देख रहा हूँ अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने को है, सिर्फ एक गीत है बाकी है जो हम सुन सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। इसी के साथ ही सामीन हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। और भाई शकील साहब आपका बहुत शुक्रिया, भाई चौधरी टकसार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और भाई इरफान हैदर साहब जनाब आपका भी बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। इंशाल्लाह एक लगता है प्रोग्राम दूसरा आप करेंगे, जाके एक दिन एक दोबारा एक दफ़ा और आएंगे, एक दफ़ा फिर तशरीफ़ लाएंगे तो आपको सुनने को मिलेगी जी शायरी भी इनसे, और ये आके सारा सिस्टम को खुद ऑपरेट करेंगे। और आपके आने का भी बहुत शुक्रिया भाई हैदर साहब आपका भी, और सामिन आपका भी सभी का। और ये आखिरी गीत आप सभी के नाम होगा, और इसी के साथ सामिन हम आपसे इजाज़त भी चाहेंगे।

0: Asian Radio on 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD88DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk।
11: उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। मैं महमूद रिजवी अकाउंटेंट, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए काबिले एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट, ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस, अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453, महमूद रिजवी।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
12: You're listening to Bradford Asian Radio,
13: 1413 AM and online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: मेरे दिल से

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंट्रेपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रेडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्राडफर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के साथ चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duffert Lane, ब्रेडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers, or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पेल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। अरे ये पूरे ब्रेडफोर्ड में क्या है शोर?
12: आपको नहीं पता, ऑफर्स इन मेनी होम स्टोर, रोजाना ताजा सब्जियां, फल, फ्रूट, सलाद, मीट, चिकन, आटा, दाल, चावल और मसाला, क्वालिटी में सबसे आला और सर्विस में सबसे बाला।
7: हर समत मचा है जिसका शोर, वो है मैनिंगम सुपर स्टोर। मैनिंगम सुपर स्टोर, कार्लाइल रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8AX, फोन ब्रेडफोर्ड 4955555। हफ्ते के सातों दिन आपकी खिदमत में पेश पेश, मैनिंगम सुपर स्टोर।
12: मैनिंगम सुपर स्टोर,
0: Bradford Asian Radio. Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
13: You're listening to Bradford Asian Radio.
14: 1413 AM and online.

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दुल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रैडफोर्ड, BDH8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रैडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट, लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद कहे कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, मंगला केटरिंग सर्विसेज UK।
11: क्या आपकी आवाज खूबसूरत है? क्या आप में बोलने की जरूरत है? अगर ऐसी ही सूरत है तो ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो को आपकी जरूरत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए और अपनी आवाज सुनने वालों के दिलों तक पहुंचाइए और खुद को रेडियो स्टार बनाइए। याद रखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी छोड़ने की आदत है तो ये आपके कल के बड़ा ब्रॉडकास्टर बनने की जमानत है। आज ही स्टूडियो नंबर 01274306677 पर कॉल कीजिए, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
10: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
10: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
13: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का,
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 आथिंगटन स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाए,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, ब्रैडफोर्ड, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स। ना ही बच्चों का कोई सेफ मुस्तकबिल, ना हमारा, कब तक ऐसे ही करेंगे गुजारा?
7: अरे सेफ राइडर जाएंगे, ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर बनके खूब पैसे कमाएंगे, बच्चों को ड्राइविंग भी सिखाएंगे,
9: बस, ट्रक, फोकलिफ्ट, टैक्सी लाइसेंस, हम हैं आपको सब कुछ सिखाने को तैयार।
7: 30 साल ब्रेडफोर्ड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफ राइडर,
9: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत, आज ही विजिट कीजिए
7: 33 Wetley Lane, ब्रेडफोर्ड,
9: 01274201679। UK।
10: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है,
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है?
10: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए, ओपन 7 डेज, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन। ब्रैडफोर्ड में फर्नीचर का सबसे खूबसूरत शोरूम लव फर्नीचर।
11: फर्नीचर तो आप घर घर देखते हैं, मगर जो देखते ही पसंद आ जाए वो है लव फर्नीचर, जहाँ पर ऑर्थोपेडिक डबल बेड सिर्फ 100 pounds से, जर्मन वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कॉफी टेबल, रग्स, कारपेट, मैट्रेसेस की वसी वैरायटी।
7: ओपन 7 डेज, 10 till 6, फ्री डिलीवरी ऑल ओवर वेस्ट यॉर्कशायर। लव फर्नीचर, कार्लाइल रोड, ब्रैडफोर्ड, अपोजिट बार्कलेज बैंक, फोन ब्रैडफोर्ड 9627229622।
11: लव फर्नीचर, फर्नीचर यू लव।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
12: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
13: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
12: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
13: हर वक्त आपके संग, आपका दम साज।
12: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है
7: अरे दुल्हा जब शेरवानी मिलान दुल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा मिलान की शेरवानी शलवार कमीज वेस्ट कोट प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं मर्दाना मलबूसात का ब्रैडफोर्ड का मुनफरिद मरकज जिनके लिबास आम से दुल्हे को शहजादा बना दे
8: मिलान दुल्हा हाउस 8183 व्हाइट एबे रोड ब्रैडफोर्ड BD88DR टेलीफोन 07885428349 अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम 1304 लीड्स रोड ब्रैडफोर्ड
7: सुनिए जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे
8: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स
7: खूबसूरत कारपेट्स लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ बॉबीज कारपेट्स लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग BD3ADN बॉबी आइए भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए नंबर मिलाइए 07414260078
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है
9: जी हाँ बेल्स जहाँ फिश एंड चिप्स बर्गर्स फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए आज ही तशरीफ लाइए ओपन 7 डेज बेल्स सी रूम 46 रूली एवेन्यू ब्रैडफोर्ड BD61DA फोन 01274306567 बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन
7: अरे सुनते हैं अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए
10: ऐसा उम्दा लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं
7: मंगनी सालगिरह शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
10: और खुशबू लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है
7: मंगला केटरिंग 77 Athington Street ब्रैडफोर्ड BD8 ATY
10: टेलीफोन 01274731555 मंगला केटरिंग सर्विसेज .uk
11: Do you know there are 170,000 new cases of cancer each year in Pakistan? Do you know that Imran Khan Cancer Appeal provides free cancer treatment to 75% of its patients? Do you know that the third specialist Shaukat Hanum Cancer Hospital is being built in Karachi? We need your support more than ever now. Please donate today by calling 01274 424444 or donate online at ikca.org.uk.
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 30
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: उफ, इतनी प्यारी प्यारी खिड़कियाँ और दरवाजे, क्या ही चॉइस है आपका?
7: ये चॉइस हमारा नहीं, ये तो कमाल है, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर का।
6: जो कि पायदार, मजबूत, खूबसूरत, डबल एंड ट्रिपल ग्लेज विंडोज एंड डोर्स के अलावा कंपोजिट डोर से आपके घरों को चार चांद लगाते हैं
7: और प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ाते हैं।
6: फर्स्ट चॉइस
7: 106 लिस्टर हिल्स ब्रैडफोर्ड BD71JL।
6: घरों की खूबसूरती और हिफाजत बढ़ाइए, आज ही फर्स्ट चॉइस का नंबर मिलाइए
7: 01274317644।
8: फॉर क्वालिटी, वैल्यू, स्टाइल एंड सिक्योरिटी, योर नंबर वन चॉइस, फर्स्ट चॉइस विंडोज यॉर्कशायर।
9: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
7: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफुट में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
9: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने कि खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है
7: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
9: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY।
7: टेलीफोन 01274731555। मंगला केटरिंग सर्विसेज UK। दुल्हन वो जो पिया मन भाई,
9: जेवर वो जो पाकिस्तान ज्वेलर से आए,
7: नित नए डिजाइन के सेट, चूड़ियां, कंगन, कांटे,
9: बालियां, अंगूठियां और हार,
7: जो दुल्हन करे सिंगार,
9: आज ही मामू काके की दुकान,
7: खालिस सोने की पहचान,
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स से शरीफ लाइए
7: और दुल्हन के चर्चे घर घर पहुंचाइए।
9: आपकी शान
7: हमारी आन,
9: क्वालिटी की पहचान,
7: पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Duckworth Lane, Bradford, BD95ER, 01274491442।
9: पाकिस्तान ज्वेलर्स।
10: Looking to start driving or building a strong career? With Safeway Rider, you can learn automatic or manual driving with trusted, friendly instructors. We offer theory classes online and in-class to help you pass first time. Need your taxi badge for West, North or South Yorkshire? We will guide you step by step. Want more? Train as a driving instructor with our audit-approved trainers or get your truck, bus or forklift license and grow your future. Safeway Rider. Call today at 01274-201-679 or visit safewayrider.co.uk. Safeway Rider, helping you secure your future.
11: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
7: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज पल्स जाने का इरादा है।
11: जी हाँ, पल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
7: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए, आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 days, पल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रैडफोर्ड, BD61DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
0: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, Our voice, your choice. Bradford Asian Radio. Call the studio now. 01274 306677.
12: You're listening to
13: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Bradford's number one Asian community radio, Bradford Asian Radio. On 1413 AM, DAB Plus, mobile app, and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
1: And the winner is...
2: And the winner is...
3: And the winner is...
1: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorised by the UK Financial Conduct Authority.
6: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
7: अरे दूल्हा जब शेरवानी मिलान दूल्हा हाउस की पहनेगा तो सब कुछ ही सुहाना लगेगा। मिलान की शेरवानी, शलवार कमीज, वेस्ट कोट, प्रिंस कोट सिर्फ तीन दिन में ऑर्डर पर तैयार किए जाते हैं। मर्दाना मलबूसात का ब्रेडफोर्ड का मुनफरिद मरकज, जिनके लिबास आम से दूल्हे को शहजादा बना दे।
8: मिलान दूल्हा हाउस, 8183 व्हाइट एबे रोड, ब्रेडफोर्ड, BD8 8DR, टेलीफोन 07885428349, अदर ब्रांच द मुगल एम्पोरियम, 1304 लीड्स रोड, ब्रेडफोर्ड।
7: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है, हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
8: तुम्हें पता है भाभी ने बॉबीज कारपेट्स के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
7: खूबसूरत कारपेट्स, लेमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डाइक, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
9: रवायती खानों से हटकर आज किसी नई जगह जाने को जी चाह रहा है
10: तो खुलकर क्यों नहीं कहती कि आज बेल्स जाने का इरादा है।
9: जी हाँ, बेल्स, जहाँ फिश एंड चिप्स, बर्गर्स, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, फ्रेश केक्स एंड मैक्रूम्स,
10: और इसके साथ साथ खूबसूरत माहौल में लाइव पियानो से लुत्फ उठाइए। आज ही तशरीफ लाइए। ओपन 7 डेज, बेल्स, सी रूम, 46 रूली एवेन्यू, ब्रेडफोर्ड, BD6 1DA, फोन 01274306567, बिहाइंड शेल पेट्रोल स्टेशन।
7: अरे सुनते हैं, अगली बार खाने का एहतमाम ऐसा करना है कि वाह वाह ही हो जाए।
10: ऐसा उम्दा, लजीज और मजेदार खाना तो ब्रेडफोर्ड में सिर्फ अवार्ड याफ्ता मंगला केटरिंग वाले ही बनाते हैं।
7: मंगनी, सालगिरह, शादी ब्याह या किसी भी मौका के लिए ऐसे खाने के खाना खाने वाला पूछे कि खाना कहां से बनवाया है,
10: और खुशबू, लज्जत और जायका खुद गए कि मंगला केटरिंग से आया है।
7: मंगला केटरिंग, 77 Athington Street, ब्रैडफोर्ड, BD8 ATY,
10: टेलीफोन 01274731555, mangalacateringservices.uk।
7: शादी आ गई है सर पर और कोई फोटोग्राफर नहीं है घर पर।
10: लगता है आपने asianweddingsuk.com का नाम नहीं सुना, जो आपकी शादी के चलते फिरते हसीन लम्हात हमेशा के लिए फोटोज और वीडियोस के जरिए महफूज करते हैं और फिल्म ऐसी बनाते हैं दूल्हा दुल्हन जैसी चाहते हैं।
7: डिजिटल क्वालिटी, तेज और दोस्ताना सर्विस, मेल और फीमेल फोटोग्राफर्स,
10: जिंदगी के यादगार दिन को यादगार तरीन बनवाइए।
7: आज ही मुबीन का नंबर मिलाइए
10: 07548419678।
7: asianweddingsuk.com, जिनकी आम सी फिल्म भी बॉलीवुड से नहीं।
0: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800 599 563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.
11: You're listening to
12: Bradford Asian Radio on 1413 AM.